0: Prime Minister Modi alleged that Dimagi Naxals were seeking to foment violence, create discord and pull society away from the path of development. Prime Minister called for such Dimagi Naxals to be identified and isolated.
1: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे. सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था.
0: Congress countered Prime Minister's Dimagi Naxal remark with Jairam Ramesh calling it a sign of desperation and accusing the government of earlier calling the opposition urban Naxals. Congress went on to say that the government eventually accepted several of the issues and demands raised by those it had branded as urban Naxals.
2: Pradhan Mantri Lal Kile se Dimagi Naxal ki bhasha istemal karte hain apne rajneetik virodhiyon ko lekar. बात ये है, हकीकत ये है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं.
3: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी. नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा. तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं.
0: Red terror may have ended in India, but the political battle over Naxal mindset appears to be only beginning. Bureau report, India Today.
4: Prime Minister Narendra Modi, in his address from the Red Fort on the 80th Independence Day, unveiled Saptadhara, or seven powerful streams that will drive India's next phase of growth and propel the nation towards becoming a developed country by 2047. Take a look at this news report.

0: Red Fort was filled with patriotic fervor as Prime Minister Narendra Modi led India's 80th Independence Day celebrations. On the historic day, Prime Minister Modi laid out a blueprint for Bharat's next decade. Modi defined seven streams that are India's strength and willpower, India's next level of growth, and named them Shaktidhara. Prime Minister Modi stressed that to emerge as a developed nation in 2047, India needs to harness the seven streams of power. Prime Minister Modi highlighted the need to position India as a key player in global supply chains, including agriculture, and urged manufacturers and farmers to focus on three key factors: cost, quality, and scale.
1: हमें छोटे-छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े-बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए. हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं. एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है. हमें वहां पहुंचना है. हमें उस जगह को हाथ लगाना है.
0: Prime Minister stressed that the world is entering an era dominated by data centers, robotics and emerging technologies, and India must position itself as a global technology hub.
1: हमें इनोवेशन का हब बनना है. हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है. हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है. अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है. मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए.
0: मोदी ऑल्सो डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड सीमलेस कनेक्टिविटी.
1: यह गतिशक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए. इनलाइन वाटरवेज चाहिए. एयरपोर्ट चाहिए. हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा.
0: Prime Minister also emphasized on strengthening domestic defense manufacturing and reduce its dependence on defense imports.
1: हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी.
0: Prime Minister Modi also pointed out that innovation in clean energy technologies would be essential for meeting future energy requirements.
1: हमें ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज ग्रीन मोबिलिटी हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया में दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं.
0: Prime Minister Modi also mentioned that India's soft power was the seventh dhara or the seventh pillar to realize Viksit Bharat vision. As Prime Minister Modi lays down the roadmap for Viksit Bharat, India has already embarked on the journey to become a developed nation. Bureau Report, India Today.
2: Prime Minister Modi hailed the youth and women during his Independence Day speech. Prime Minister Modi said that youth will turn dreams into reality and that Yuva Shakti is the biggest contributor to Vikas. Prime Minister Modi also raised the issue of women's reservation bill and urged the opposition parties to support it. The Congress hit back at Prime Minister Modi, getting you all the details in this report.
1: पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं. और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर.
0: Prime Minister Modi's big Yuva and Mahila outreach from the ramparts of Red Fort, and it came during Prime Minister Modi's Independence Day speech.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है.
0: Prime Minister Modi asserted, youth will turn dreams into reality. Says Yuva Shakti, the biggest contribution to Vikas.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: He announced free online coaching for various competitive examinations, said government wants to reduce the amount families are spending on coaching.
1: हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: He also announced a special nationwide talent hunt to identify sporting talent ahead of the Olympics.
1: हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: Alongside the free coaching initiative, Modi also announced a plan to provide artificial intelligence skilling courses to 1 crore young people.
1: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: Women's reservation also echoed from the ramparts of the Red Fort. In a special appeal, Prime Minister Modi urged the opposition to support the bill and give women the rights they deserve.
1: मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: The Congress hit back at Prime Minister Modi.
3: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बाबा ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर।
0: The two announcements put both education access and future employability at the center of the government's Independence Day message. Bureau Report, India Today.
2: For decades, India's journey to space had one name, ISRO. But now, a new generation of Indian companies is daring to rewrite that history. At the heart of this new chapter is Skyroot's Vikram 1, a rocket that could redefine how India reaches the stars. This Independence Day, Kshitija Gosavi takes you inside India's new space revolution and why this could be just the beginning.
4: 2-1-0.
5: India's first private orbital launch.
6: What Skyroot achieved on its first orbital launch took SpaceX's Falcon 1 4 attempts.
7: We blew up a rocket 3 times before finally reaching orbit.
6: And that's exactly why Vikram 1 is one of the biggest moments in India's space history.
8: We are opening space for all.
6: For decades, only ISRO could launch rockets from India. Until 2020, private companies couldn't independently develop and launch orbital rockets from India. If you wanted to reach space, ISRO was the only path.
7: When we started Skyroot in 2018, there was no policy at that time, there was no funding environment at that time, and there was no talent specifically trained in the private sector. So it was literally extremely difficult. So we had to build our own path and chart our own direction to be able to solve all these problems.
6: So when Skyroot Aerospace was founded in 2018, it wasn't just trying to build a rocket. It had to help build an entire new industry. The company had to develop its own rocket engines, carbon fiber structures, avionics, software manufacturing systems. Also raise millions in fundings for one of the riskiest businesses on Earth. Work through a brand new regulatory framework and then integrate everything for a launch from ISRO Sriharikota spaceport. And here's the hardest part. A rocket gets one chance. It has to ignite perfectly, survive massive vibrations, separate its stages within seconds, accelerate to nearly 28,000 kilometers per hour, and place satellites into orbit with extraordinary precision. That's why maiden orbital launches are so difficult. And there's a very important point to note. Well, SpaceX's Falcon 1 reached orbit only on its fourth launch, after 3 consecutive failures. And what about Vikram 1? Skyroot's Vikram 1 reached orbit on its very first orbital attempt, a remarkable achievement for any new launch company.
7: So Skyroot is the new launch player globally. So there are only two companies which are regularly launched to space, which is SpaceX and Rocket Lab. And then now we, with our successful launch, now we are like opened access to space much higher.
6: And this isn't just win for Skyroot. It's the proof that India's space story is entering a new chapter, where private space companies don't just support missions. They build rockets, launch satellites, and compete on the global stage. And Vikram 1? Vikram 1 wasn't just carrying satellites. It was carrying the future of India's private space industry.
2: Students protesting against exam irregularities in Jharkhand held a Tiranga Yatra today. Thousands attended the Yatra in Ranchi, demanding reforms in the JPSC and JSSC examination systems as they held the tricolour in their hands and raised patriotic slogans such as Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. The march was organised from the protest site of Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Ekka Chowk as the agitation reached its 22nd day of Independence Day. Student leader Devendranath Mahato, who is on a fast since 14 days, has claimed that the police did not allow him to leave the hospital and join the march. Mahato alleged that he was stopped and jostled by police and sustained an injury to his chest. Meanwhile, after hoisting the national flag, Chief Minister Hemant Soren assured that the hard work of job aspirants would not be left at the mercy of the paper leak mafia, saying that simply arresting the guilty is not enough and that comprehensive reforms are needed to protect students' future. Soren said that the government will overhaul the system, examine students' suggestions and ensure impartial justice.
4: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
9: साहब, अपने युवाओं के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया। यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को, किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है। यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब, उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
10: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरा जो भी हो। लेकिन अब वो अंतिम समय, मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक के रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था तो उनको जाने नहीं दिया गया।
11: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो CS साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक, अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखे हैं? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से। अगर यहाँ पे आप इलाज करते, इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं। कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये सर, ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
12: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफी इम्बेलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं, और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए। पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
2: With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. To stay tuned to India Today.
13: You are watching India Today.

Flu season is here, and this time it's got a new name attached to it. You'll probably remember H1N1. Yes, it's back in Delhi. For this video, we've spoken with Dr. Suranjit Chatterjee, internal medicine specialist at Apollo Hospitals. The numbers tell the story here because according to reports, Delhi has already logged around 1,300 swine flu H1N1 cases this monsoon. That is nearly six times last year's count for the same period. The real numbers are likely to be much higher. So if your kid comes back home with a fever, how do you know which one is it actually? देखिए, regular flu और H1N1 दिखते identical हैं पर है नहीं। कहने को उसमें भी fever होगा, cough होगा, body ache होगा, sore throat होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा detail में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो H1N1 का fever होता है, वो suddenly spike करता है और बहुत देर तक ऊपर रहता है। It is stubbornly high. Also in certain cases breathlessness हो जाती है, deep fatigue होता है, आपको disproportionately ठंड लगेगी और muscle और joints में भी बहुत pain होगा। तो एक adult तो शायद ये differentiation बता सके, पर बच्चों को ये सारे symptoms बताना बहुत मुश्किल होता है। So your first thing to do if you have a flu this time of the year is please get tested. The only way to confirm is to actually get it tested, especially if somebody around you has already got H1N1. अब treatment की बात करते हैं। अगर आप H1N1 positive निकले हैं, तो generally ये cases आजकल mild हो गए हैं और 3 से 5 दिन में clear हो जाते हैं, just like flu. And क्योंकि एक ये viral infection है, आप ज़्यादातर इसका symptomatic treatment देते हैं। आपका fever manage करा जाएगा, आपका body pain manage करा जाएगा, आपको बहुत सारा rest करने को बोला जाएगा and fluids लेने को भी कहेंगे। लेकिन ये problematic किन cases में हो जाता है? अगर आप elderly हैं, अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर if you are a pregnant woman, anyone with diabetes, heart disease or a lung condition, ऐसी conditions में doctor आपको एक antiviral पे शुरू कर देंगे, oseltamivir या फिर Tamiflu के नाम से ये बहुत famous है। अब मैंने आपको नाम बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप self prescribe कर देंगे, let your doctor take that call। एक और सवाल आता है कि अगर आपने influenza shot या flu shot लिया हुआ है, क्या वो आपको help कर सकता है? देखिए, seasonal flu के जो shots आते हैं, उसमें H1N1 का protection होता है, but इसका कोई guarantee नहीं है कि अगर आपने shot ले लिया, आपको infection नहीं होगा। इन्फेक्शन का जो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है वो कम होगा इस शॉट से। न्यूबॉर्न्स और टॉडलर्स के वैक्सीनेशन स्केड्यूल में ये ऑलरेडी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या नहीं करना है? सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को फीवर है तो उसे स्कूल ना भेजें, पूरे क्लास को इम्पैक्ट करने से बचाएं। दूसरा, सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना है। एंटीबायोटिक्स आर अ नो। H1N1 इज अ वायरस, एंटीबायोटिक्स डू नथिंग टू इट, दे ओनली कॉज मोर प्रॉब्लम। एंड लास्टली, Do not skip a good hand wash routine. Mask पहनना थोड़ा difficult हो जाता है, लेकिन अगर आप constantly अपने hand wash कर रहे हैं, sneeze सही तरीके से कर रहे हैं या cough सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी काफी अच्छे से बचा सकते हैं।

धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है, आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं, और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: क्यों झंडा फहराने से रोका गया, हमको क्यों देश के प्रति प्रेम भावना के लिए तिरंगा यात्रा में जाने से रोका गया, क्यों मेरे साथ 5 दिन एडमिट के बाद हॉस्पिटल के अंदर मारपीट हुई।
1: हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं खाएंगे मेरा जो भी हो, लेकिन अब वो अंतिम समय मेरा जो भी हो मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक कर रख दी। तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था तो उनको जाने नहीं दिया गया।
2: हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो सीएस साहब जी से बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम है, तो ठीक अगर आप सक्षम है तो आप पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर क्यों रखें। सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से, अगर यहाँ पे आप इलाज करते इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं, कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये सर ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है।
3: साहब अपने युवाओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया और कह दिया कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में युवा आए थे और आपने किसी का नाम नहीं दिया, यानी आपकी पुलिस भविष्य में किसी भी आंदोलनकारी छात्र को किसी भी आंदोलनकारी नेता को उठाकर उनका नाम चार्जशीट में डाल सकती है, यानी भय और भयभीत करने के लिए आपने ये सब किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आज 15 अगस्त के दिन जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है ये हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनका अपमान किया। साहब उस मंच से कम झूठ नहीं बोलना था।
4: मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी, जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
5: नहीं, अभी स्थिति है लुक लाइट काफी इम्बैलेंस है, सोडियम 124 है, पोटेशियम भी कम है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट एग्जॉस्ट करते हैं उस स्थिति में संभावना है सीजर वगैरह भी आ सकता है। इस कंडीशन में हम लोग किसी भी कीमत पर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम लोग डिस्चार्ज उनको नहीं करने का समझाए हैं और हम समझते हैं कि उनको समझना भी चाहिए। पेशेंट के साथ में अगर इस तरह का हम लोग करते हैं तो दिक्कत होगा।
6: And some more news coming in. Actor Faria Abdullah fights hate attacks. Faria faces vicious hate over Telangana Bunalu dance. She had danced at Mahakaleshwar temple in Bunalu Bash and she now faces online attacks calling her kafir. Faria Abdullah called a traitor to Islam. Faria breaks down over online hate surge, responds to the trolls with emotional appeal for love. Faria points to her multi-faith upbringing. She says that see religion with lens of love, celebrating Hinduism is not anti-Islam. And Faria Abdullah schools the hate brigade. And she says that I stand for peace, unity and love. My colleague Abdul is now joining us with more details on this. Abdul, give us more details on the entire controversy and the hate attacks that Faria has been facing, after which she had to school the hate brigade.
7: Well, this whole controversy began when Faria Abdullah had visited the Bunalu festivities. Regarding the Bunalu festivities, she visited the Mahakaleshwara Ammavari temple in Viralam Mandi on August 10th. Where she had done all the rituals, she had danced to the beat, and all the rituals were done there, and then she left the premises, after which her video started going viral on

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: He later revealed the performance was completely impromptu, calling it the joy of music despite being in pain. A recent Usher concert in New Delhi sparked bizarre online speculation about some fans claimed the singer did not look like himself. Some even suggested he could be a clone, though there is no evidence supporting the claim. A Japanese woman traveled thousands of kilometers to Uttarakhand to fulfill a promise to her late husband. Miyako Ketlet carried his ashes to Bageshwar and performed his final rituals before immersing them in the Saryu River.
1: Hello everyone, mera naam Shilpi Jain hai. Aur jaisa ki abhi tak aap logon ne news mein dekh hi liya hoga, jo flight Phuket se Delhi aa rahi thi.
0: A passenger on Air India flight from Phuket to Delhi described the terrifying turbulence encounter.
1: ये आप देख सकते हैं मेरा बोर्डिंग पास मेरी सीट थी 23F
0: Claiming the aircraft suddenly dropped around 300 feet. She called the experience a near-death experience after flight AI2379 encountered severe turbulence.
1: इंजरी आई है कुछ लोग जो मेरे आसपास थे इनफैक्ट वो लोग काफी ज्यादा पीछे की साइड कोई इधर की साइड और काफी अलग अलग तरीके की लोगों को इंजरी आई है और जब ये इंसिडेंट हुआ क्रू मेंबर काफी अच्छा था और काफी अच्छे से सपोर्ट करा दैट आई अप्रिशिएट बट उन लोगों ने एक चीज बोली कि आप लोग कहीं भी वीडियो बना के इस इंसिडेंट को मत डालना क्योंकि इससे हमारी रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगा इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी जो कि मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगा.

0: inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying that there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung, as discussed in the Parliament. Meanwhile, BJP has released another video of Congress MP and Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi from the same event, where he can be allegedly heard in the video saying that we do not need to sing Vande Mataram, as the party cadre will be singing their own song.
1: Srimati Sonia Gandhi, their super president Rahul Gandhi, and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act.
2: Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Kharge ji, ye pata hai ki unhone Vande Mataram ko band karne ke liye bhi keh diya, aur ye भारत का अपमान है. वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है. वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है. उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम.
3: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है. ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है. ये उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है. और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा.
4: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है. ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पर बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्य दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल.
5: सोनिया जी तो NSC की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही. प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया. लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आज़ाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ.
6: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है.
0: And during his Independence Day address, Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
7: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है.

0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: Hello everyone and welcome to this very special conversation. The monsoon session of Parliament was a near total washout. The distrust between the opposition and the Treasury benches was on full display, and that is also continuing now outside Parliament. What was on government's agenda and what is the government's game plan? Now, joining me is Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. Kiran Rijiju ji, shukriya humse baat karne ke liye. I'm going to begin with the numbers that you gave. You said that Lok Sabha productivity was at 19%, Rajya Sabha at 39.17%. Nine of the bills passed by the lower house, only with the minister speaking. My question is that the parliament is for scrutiny. It is for behas. Us par charcha honi chahiye thi, jo nahi hui. To kya पार्लियामेंट चलाना आपकी सरकार के लिए एक फॉर्मेलिटी है?
1: शुक्रिया जी. सबसे पहले तो सरकार के दृष्टि से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करना था हमने पूरी की. सो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वी पास 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बिल्स. सो वी आर हैप्पी दैट द गवर्नमेंट बिजनेस हैज ट्रांजैक्टेड. बट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इफ वी से that have we run the house as per the norms of the parliamentary democracy, then definitely no. Because as a parliamentarian, I would definitely want to scrutinize the bills, and all the members should get enough time to speak, to suggest, intervene, and also, if necessary, to amend. So from government's point of view, the bills are passed, but who is in the loss? It is the opposition parties who could not put forward their views during the discussion because they did not take part in the discussion. So my view on this entire monsoon session is in two parts. Purely from the government's point of view, the business transaction was satisfactory. But from the parliamentarian point of view, and in the view of being the largest parliamentary democracy in the world, we did not debate, we did not discuss enough, especially in the Lok Sabha. In Rajya Sabha, the discussion was partial because entire ruling party, the NDA partners, they took part in the discussion, and some of the opposition parties also did take part in the discussion. But the main opposition party, Congress and Trinamool, and few of them, they didn't take part.
0: You know what happened before this session? You entered the monsoon session after historic Bengal victory. There were defections which had happened in TMC, in the Shiv Sena. Aam Aadmi Party MPs had also defected and joined the BJP. There was this confidence with which government entered the monsoon session. You were confident ki aap delimitation bill pass karwa denge. Delimitation bill ka kya future hai? Pehle mera ye sawal hoga. और FCRA वो तो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ बिल पास हो सकती थी, लेकिन ऑपोजिशन हैड एन अपर हैंड इन गेटिंग इट सेंट टू द जेपीसी.
1: नहीं, सबसे पहले तो हमने महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को मानसून सेशन में ही पारित करेंगे, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है और संविधान संशोधन चाहिए जिसके लिए पर्याप्त संख्या और सदन के अंदर में एक माहौल होना चाहिए. आप वोटिंग जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें हाउस इन ऑर्डर और डिवीजन वोटिंग होते हैं, तो उसमें शोरगोल में आप संविधान संशोधन बिल पारित नहीं कर सकते हैं. और हमने कहा नहीं कि अभी हम तुरंत पारित करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास संख्या है. लेकिन संख्या होते हुए भी हमने जबरदस्ती नहीं किया. जैसे FCRA का बिल के बारे में आपने जिक्र किया,
0: लेकिन सर एक मिनट मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी. संख्या की बात जो आप कर रहे हैं, यू हैव द नंबर्स टू गेट द डिलिमिटेशन पास्ड, विच इज एसेंशियली अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच रिक्वायर्स 2/3.
1: यस, बट वी डिड नॉट प्रेस फॉर इट बिकॉज वी थॉट लेट देयर बी मोर कंसल्टेशन विद इन द पार्टीज. तो हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया. देखिये, हम बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं. अपोजिशन कुछ भी कहे, उससे कोई हमारा छवि बदलने वाला नहीं है. हर बिल हमने जबरदस्ती पास नहीं कराया. बिल पारित होने से पहले हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल को बताया, समय आवंटन किया और फिर हमने बिल को लिस्टिंग करके हाउस में रखा। कोई भी ऐसा एक घटना नहीं है जहां हम ऑपोजिशन को पूछे बगैर कोई भी बिल पारित किया हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, कई ऑपोजिशन एमपीस मेरे पास निजी तौर पर आए और ये कहा कि कृपया राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और कुछ लोगों से बातचीत करके बिल को चर्चा कराइए, हम लोग बोलना चाहते हैं
0: एफसीआरए पे,
1: नहीं कोई भी बिल, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से बहुत लंबा चर्चा की, अखिलेश यादव जी से भी चर्चा की और बाकी ऑपोजिशन पार्टी के कई नेताओं से मेरा बातचीत बहुत अच्छी तरह से हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो सदन में चर्चा के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि बिल पे चर्चा नहीं होने से ज्यादा नुकसान ऑपोजिशन पार्टी का है, क्योंकि सरकार का मत तो ऑलरेडी हमने कैबिनेट में बिल पारित करते हैं, फिर कैबिनेट से क्लियर करने के बाद वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं, तो सरकार का मत तो बहुत साफ है। और कुछ बिल्स को हमने स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में भी भेजे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कहते हैं कि सेशन वॉश आउट हो गया, सेशन वॉश आउट नहीं हुआ, सेशन पूरी तरह से हमारे लिए कामयाबी रहा, 12 बिल्स पारित किए, एक बिल पर चर्चा हुई। जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जाम्स, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत कठोर कानून बनाया, उसका चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुए। हाँ, इतना बात जरूर है कि पेपर लीक को लेकर के इतना मजबूत कानून बनाया तो ऑपोजिशन उस पर नहीं बोले, वो बाहर का इधर उधर राजनीति करने लगा, लेकिन चर्चा हुई।
0: लेकिन सर, इफ ऑपोजिशन वांट्स डिस्कशन ऑन सर्टेन इम्पोर्टेंट इश्यूज विच ऑल्सो इंक्लूड्स चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है,
1: तो
0: फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
1: अरे, एक बात यह साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा, तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मागर्म विषय बना, तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया। अरे, जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मैच्योर्ड है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा। देश में कितना आंदोलन हुए हैं, तेलंगाना राज आंदोलन से लेकर के कई ऐसा आंदोलन हुए, कितने सौ सौ लोग गोली से मारे गए।
0: लेकिन
1: आप सुनिए, उसमें कोई भी रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ, हमारा तो शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं। पैलेट गन्स तो हजारों में सौ सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा? पैलेट गन्स तो एक गोली नहीं होते हैं। और इतना बड़ा आंदोलन में आप बताइए,
0: किसी पीपल हु केम ऑन रिकॉर्ड सर, देयर आर टू ऑफ देम हैव पिटिशनड इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो,
1: तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, हम तो इसमें अभी कुछ कहना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस के दौरान में पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया, कई जगह में कांग्रेस के जमाने में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, यहां में कोई पैलेट गन से कोई मौत, जैसे कि मैंने कहा अगर वहां 4-5 हजार लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पैलेट गन्स चलेगा तो कितने लोगों को चोट लगेगा? 300-400 लोग को चोट लगेगा।
0: नंबर ऑफ देम हुज इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड,
1: देखिए वो तो मैं इसलिए
0: कम ऑन रिकॉर्ड आल्सो टू टॉक अबाउट देयर इंजरीज।
1: आप बताइए कि कोई मौत नहीं हुआ सबसे पहले, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस एजिटेशन में किसी का मौत नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव तोड़ के कोई अस्पताल में सीरियसली इंजर्ड ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब पुलिस ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है। अब इसको तो थोड़ा तो आपको मानना पड़ेगा ना, सही बात है कि अगर 30-40 हजार लोग आता है एक जगह और जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए करते हैं तो क्या पुलिस उसको रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे क्या?
0: बट व्हाट राहुल गांधी सेड हियर दैट ही वांटेड अ स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर।
1: आप राहुल गांधी जी को विश्वास मत कीजिए, वो बिना सोचे बात करते हैं। लीडर ऑफ ओपोजिशन होने के नाते मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, लेकिन बिना सोचे अगर बात करेगा तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी खुद ही बोला कि मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट दो। अरे स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ऑपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का।
0: सो इट गॉट स्टक बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड ऑपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर रूल?
1: नहीं, स्टक नहीं है, कांग्रेस पार्टी माना ही नहीं है। हम तो स्टक नहीं ना, हम तो पेशकश किए, चर्चा करेंगे।
0: But sir, Home Minister Amit Shah, as the Congress is saying, and he offered on 12th that he will sit from that day at 3 p.m.
1: offer ne kiya, pehle kiya maine
0: 3 p.m. next
1: Home Minister ne kab offer kiya? Jab maine baar baar kaha ki hum charcha ke liye taiyar hai, maine sadan mein bhi kaha, business advisory mein bhi maine committee ko jankari diya ki hum agitation jo students ka hai charcha ke liye taiyar hai. Home Minister to baad mein isliye likha पत्र स्पीकर को, इसलिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि वो मान ही नहीं रहा है। तो मैंने तो सरकार की ओर से मैंने कह दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं और पूरी चर्चा डिटेल में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो घंटे बात करेंगे। देश को सुनना चाहिए ना, देश को जानकारी होना चाहिए। हम तो जवाबदेही सरकार है, हम तो चुने हुए सरकार है, तो लोगों को हमको जवाब देना होता है और चर्चा ही नहीं होने देते हैं। तो ये प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से शुरू होता है। कांग्रेस के एमपी लोग खुद कहते हैं कि चर्चा होते तो बहुत अच्छा था, उनको बोलने का मौका मिलते। कांग्रेस में भी कुछ एमपीस हैं तकिया पकड़ के वो नाराबाजी नहीं करते हैं, कुछ लोग को ही करवाते हैं।
0: बट मिस्टर रिजिजू, व्हेन द बीजेपी वाज इन ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट, डिसरप्शन वाज सीन एज लेजिटिमेट।
1: प्रोटेस्ट इज लेजिटिमेट, हु इज सेइंग देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेस्ट? You protest to seek government's attention or government's response. Here, government itself is coming out and saying that we are ready to discuss. We are offering a discussion. So where is the question of protest?
0: But
1: see,
0: this
1: Maria,
0: offer-
1: you have to understand one thing. In this country, anybody can protest anywhere. This is their democratic right. Every Indian has absolute right to protest against the government or against anybody. But parliament is a place where few MPs have the privilege to speak. If parliament is also used as a battleground for protest only, then where will you speak? The privilege which the MPs have received from the constitution has been demolished by this irresponsible behavior of the Congress party.
0: But did you sense that while, you know, during the course of this monsoon session, that what you had hoped was a divided opposition, wo nahi dikha aapko? Because of the crackdown which happened against protesting students on 20th of July, everything changed.
1: See, Maria, again, I am telling you, the protest in Jantar Mantar, although many people know it is illegal protest, but we did not do anything. The court had said that protest in Jantar Mantar is not allowed. But despite that, they went on protest. Did any force was used? No.
0: On 20th July?
1: That is when they marched towards parliament. You have to clearly demarcate the level of tolerance where police had to break it to use force. That is only when they march towards the parliament. So the whole country has to know, as long as the protest is peaceful, not a single force or any coercion was used. They were protesting. Does it mean that they will be allowed freely to march inside the parliament? How you tell me, how will you prevent the march of those people where some of them are from the background we know, the anti-social elements, and many of them are party workers, genuine students? We want to hear them out. Genuine students are always right. But then who are there in the protest? It is the Communist Party. वो दपली बजा बजा बजा करके जो सुबह सुबह वहां गाना गा के घूमते रहते हैं, वो तो आप कहां से वो मालूम है? अरे भाई, स्टूडेंट नहीं है वो, दे आर नॉट स्टूडेंट्स।
0: इफ दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, हाउ आर दे नॉट स्टूडेंट्स?
1: इफ यू आर ए स्टूडेंट, यू मस्ट आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज ए रेगुलर स्टूडेंट. दिस वन ग्रुप कॉल भीम आर्मी, समाजवादी, आम आदमी, दे वेर देयर थ्रू आउट द एजुकेशन. स्टूडेंट्स वेर देयर बट स्टूडेंट्स वेर मच लेसर इन द नंबर्स. एंड कांग्रेस, यस आई कैन से दैट कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोटेस्ट. कांग्रेस लीडर्स डिड विजिट बट कांग्रेस लीडर्स डिडंट टेक पार्ट इन द protest, student protest. But in the name of student protest, who all were there misusing the students, misguiding them, and also taking opportunity, and they tried to take the lead, and you know, they tried to encourage the students
0: but
1: to march towards the parliament.
0: Interestingly, Mohan Bhagwat, RSS chief, has said that Gen Z is honest, emotional, deeply patriotic, and their grievances are genuine.
1: That is what Prime Minister has already said. That we have to listen to the young generation. Of course, Gen Z is not our concept. It's some Western innovated concept. But still, if you count it, that age group, young group, we have to listen to the students. They are the future. But why some political parties are trying to misuse the students? Did Abhijit Dibke, he's an Aam Aadmi worker. Everybody knows that.
0: But there are.
1: Are you aware of that?
0: But there are also those who are associated with them who may not be Aam Aadmi Party workers.
1: I'm not saying the protest is bad. What I'm saying is some political parties, some political leaders whose political future and political standing has completely gone, they want to revive their political fortune through the student protest. That is not good.
0: But Mr. Riju, as a young parliamentarian yourself, you've always supported the youth of the country.
1: See,
0: then shouldn't you be more proactive and agree with what Mohan Bhagwat ji said, that they are our own people?
1: Maria, I'm once again saying, Mohan Bhagwat ji, what he said, you quoted rightly. What I'm quoting is Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has clearly told all of us, he told the nation, he addressed the students saying that we will listen to the students. Except that, let us not abuse each other. Let us conduct ourselves in a civilized manner, more civil in our approach. And we are in a democracy. If you don't protest, if you don't resist, if you don't accuse, if you don't criticize the government, where will you do it? We welcome it. We have come through so much of turbulent in the past. We were in opposition for last 50 years, more than 50 years. We never misused any agitation to propel ourselves into the government. I myself have walked for months and months and months in the villages. That's why, don't tell me I'm young parliamentarian.
0: Okay.
1: I had enough of my experience in the parliament, and I can definitely say that I'm upset because the parliamentary ethics, which we all love to follow, the Congress party has totally broken their parliamentary ethics. They have conducted themselves in such a way that I'm very upset. I'm very sad. As a parliamentary affairs minister, I tried to bridge the gap, but the Congress
0: party didn't agree. How many times did you meet and cross across the aisle, go across the aisle, go across to
1: often.
0: The opposition parties to hold meetings? Kitne baar aapne koshish kiya, kitne baar aap mulaqat ki hai?
1: Main to Rahul ji se bhi kamre mein bhi lagbhag ek ghante hum baat kiye, aur aana jana mein bhi thoda thoda baat to hote rehte hain. Main telephone se bhi Rahul ji se mera baatcheet hui hai. Priyanka ji ko maine bola. Priyanka ji ko to main itna tak bola to aap to zyada samajhdar lagte hain, kam se kam aap to aa jao baatcheet ke liye aur डिबेट डिस्कशन के लिए आप आ जाइए. फिर कांग्रेस के और कई नेता हैं, वेणुगोपाल जी, सबको मैंने बात किया. मेरा भाई, छोटा भाई समान गौरव को मैंने कितना बार बोला, थोड़ा समझाओ राहुल जी को.
0: बट यू नो व्हाट इज आल्सो प्लेइंग आउट इज वेरी वेरी कंसर्निंग ट्रेंड वेयर वुमेन आर ऑलमोस्ट बीइंग यूज्ड एज टूल्स फॉर यू नो फॉर स्कोरिंग पॉलिटिकल पॉइंट्स. व्हाट प्लेड आउट एट कांग्रेस पार्टीज इवेंट यस्टरडे, and then a counter which came from your party colleague and a former and a present member of parliament, it appears that women, even in positions of power, women leaders have become fair game.
1: Maria, we will always ensure that we don't do anything which will show disrespect and which will hurt the dignity of women. We are extremely careful about that. Yesterday, what Rahul Gandhiji did was very unfortunate. In fact, it's very despicable. He had conducted in such a way that demean his own position. Rahul Gandhiji is the leader of the opposition, and he's also son of former Prime Minister. Prime Minister represents the country. Prime Minister is the face of the country. By ridiculing Prime Minister's position, you are actually ridiculing your own position. It's demeaning the position which he holds. It's very unfortunate. I think because of such conduct, people will fail to trust Rahul Ji, and people will not take him seriously if he continues to conduct in such manner.
0: But the language which was used by your party colleague in response to the outrage which came.
1: Which response?
0: Nishikant Dubey.
1: No, Prime Minister didn't say anything. None in the cabinet had used foul language. Nobody in the party president or senior functionary said anything. I cannot comment about everything or everybody, but I can definitely say that the responsible people in the party, especially the ministers, we never use such words.
0: You know, I have a couple of more questions, and this is a question that I'm asking to the former law minister, also a lawyer. How do you look at the chairman of Bar Council of India and your party MP, Manan Mishra's directive?
1: What directive?
0: Which he said that Nalsar students will not be allowed, and then of course there was withdrawal after the outrage. Do you see that this kind of collective punishment which was announced?
1: No, that I think I have not gone detail into that. That the chairman of the Bar Council of India can respond to your question. But what I can say is we must be tolerant to each other. We all must respect each other. Chief Justice of India is head of the Indian judiciary. His position has to be given due respect. Every institution will have to maintain its dignity. If few groups in any institution tries to take a course which is motivated or influenced by the ideology, then it will do lots of harms to the institution itself. If you don't have the capacity to listen to the person of the opposite view, then it's not good for the democracy. And when it comes to judiciary or the Supreme Court judges or anybody, I think we have to be extremely careful. I cannot comment on that incident because I have not really got information about
0: but
1: that in details.
0: Universities and campuses, spaces for raising concerns and protests.
1: That's what I'm saying. No? You should raise your concerns and all. How can you prevent somebody from coming to the
0: bar?
1: No, to the institution or anywhere. See, what I'm saying is every institution will have lots of people with diverse background, different ideology. If you are not prepared to invite, or if you are there to prevent the entry of any person whom you don't like, institution cannot run that way.
0: My last question to you is coming from what we have seen over the last few days on social media. A lot of people from Arunachal Pradesh have put out videos, and even Rahul Gandhi has now raised it. And his words are, and I'm quoting you him, Arunachal Pradesh mein kai jagahon par Chin ne hamari sena ko patrolling karne se rok diya hai. Ye behad chinta janak hai.
1: Rahul ji ko history ke baare mein pura gyan nahi hai, kyunki Arunachal Pradesh, jiska naam Nefa tha, aapko malum hai, main aapko 2 minute time leta hu isko samjhane mein. Arunachal Pradesh mein jo Tawang sector hai, wo Bharat ka saath 1951 mein jude. 1951 se pehle wo tax dete the Tibet mein. 1959 mein Dalai Lama ji Tibet chhod ke aaye. और चीन का प्रधानमंत्री चाओ इनलाई जब यहां आए तो उन्होंने बार बार कहा कि ये जो नेफा कहते हैं आप मैकमोहन लाइन से नीचे ये आपका हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, आप इसको रखिए. चाइना ने ही कहा, उस समय अरुणाचल का नाम नेफा थे, तो ये नेफा आपका है, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया चीन ने अरुणाचल को, और बदले में ये कहा कि आप अक्साई चीन को क्लेम मत करो और हम नेफा को कुछ नहीं कहेंगे, मैकमोहन से आगे आपका ही है। जबकि 1914 में शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन को बाउंड्री बना दिया था, तो चाइना ने मान्यता दिया था उसको, उसमें साइन तो नहीं किया लेकिन बाद में कहा कि ठीक है नेफा आपका टेरिटरी है। लेकिन बाद में जब इंडिया ने कहा कि नहीं हम अक्साई चीन नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके चीन ने फिर पहले तवांग को क्लेम किया, फिर अरुणाचल को क्लेम करने लगा। 1972 में नेफा से ये अरुणाचल नाम रखा, फिर 1987 में फुल फ्लेज स्टेट बना। तो अरुणाचल में जो जगह अभी एलिगेशन लगा रहे वो 1959 में असापिला रेंज में जो लोंगजू साइड में जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 में ऑक्यूपाई किया। 1962 में कोई एडिशनल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, 1959 में ऑक्यूपाई किया, उसमें असम राइफल के हमारे कुछ जवान मारे गए। हमारे पास रास्ता नहीं था, कोई उसमें मेंटेनेंस करने का व्यवस्था भी नहीं था। बाद में असम राइफल के जगह में आईटीबीपी आए, इंडियन आर्मी तो है ही लेकिन फ्रंट में आईटीबीपी रहते हैं। 2013 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी साहब ने कबूल किया है कि अरुणाचल साइड में और चाइना का बॉर्डर एरिया में भारत का नीति ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने ये माना कि वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। अब चीन के डर की क्या क्या है वो पॉलिसी बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 और 1962 में किया,
0: जगह नहीं गया।
1: नया जो बात कर रहे हैं वो ऐसा है, क्योंकि हमारा रास्ता नहीं था, भारत सरकार ने ही रास्ता नहीं बनाने का पॉलिसी बनाया, तो वहां पे जो ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट है वहां पर चाइना ने पहले रास्ता बना लिया और उन्होंने पोस्ट बना लिया, और उसमें हमारे लोकल का कोई डिमार्केशन तो था नहीं, ग्रेजिंग करते थे हमारे जो एनिमल्स वगैरह याक गाय वगैरह जो भी है वो ग्रेजिंग करने का, क्यों खाली मैदान है वहां, गांव तो होता नहीं है, गांव तो थोड़ा नीचे नीचे में है। तो जो अभी हमारा कुछ लोग अरुणाचल के कुछ लोकल लोग कह रहे हैं वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग पहले ग्रेजिंग करते थे वहां नहीं जा पा रहे, वहां चाइना ने इस्टैब्लिश किया है पोस्ट बनाया। वो बात सही है लेकिन वो सारा एरिया इसलिए चाइना ने ऑक्यूपाई किया क्योंकि इंडिया ने तो रास्ता बनाया नहीं, इंडिया का कोई एक्टिविटीज था नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी काम जो है वो तो 2014-15 के बाद ही प्लानिंग करके अभी शुरू हो रहा है। ताक्सिंग जो जगह कह रहे हैं वो 2019 में ही रोड कनेक्ट हुआ, आप सोचो 1947 में आजादी प्राप्त हुआ और ताक्सिंग में रोड मोदी जी का समय में 2019 में कनेक्ट हुआ, ऐसे यहां गुंजी में भी देखिए 2019 में कनेक्ट हुआ। तो जब हमारा रास्ता ही नहीं था तो चाइना ने रास्ता बना लिया और उन्होंने कई जगह ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हमारा लोगों का जो कंसर्न है सही है। लेकिन ये जो आप गूगल मैप देख करके बात मत कीजिए, गूगल मैप में तो आगे को ऐसे येलो लाइन खींच देता है या व्हाइट लाइन खींचेगा और ये बॉर्डर रख करके दिखा देगा, वो तो मालूम नहीं है। और हमारे लोग भी कुछ लोग तो बेचारा नहीं जानते हैं, मैं तो ब्लेम नहीं करता हूं, उसको मालूम नहीं, वो गूगल मैप देखते हैं और कहते हैं ओह ये तो इंडियन टेरिटरी। अरे वो जो जगह जहां चाइना लोगों ने घर बनाया, जो गांव बसाया, बिल्डिंग बनाया, वो 1959 में ऑर्डर ले चुके हैं
0: ऑलराइट, थैंक यू।
1: लेकिन हम एक इंच नया जमीन तो नहीं देने के लिए, हम लोग पूरा हमारा फोर्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, हम लोग तो लेट से शुरू किया ना, चाइना तो पहले कर लिया।
0: All right, Kiran Rijiju, pleasure speaking to you and thank you for taking all the questions.
1: Thank you.

0: राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा, जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर, कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया। सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया, तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह कोई इत्तेफाक नहीं था। और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार, जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं।
1: So the BJP's big attack against the Congress party, claiming that Congress, the senior leaders of the Congress party, including Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, insulted the national song on Independence Day. So the Independence Day event at the Congress headquarters has now become the latest flashpoint in the long-running Vande Mataram row between the government and the Congress. A video from the event has now become the center of a political storm, with the BJP alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. The BJP alleges that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It claims Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi too signaled that it should end. The BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital. The Congress has rejected these allegations, saying that there was no attempt to stop the Vande Mataram recital. The party says Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. The Congress maintains that the full Vande Mataram was eventually sung as discussed in the parliament. Meanwhile, BJP has released another video of Congress MP and Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi from the same event, where he can be allegedly heard saying in a video that we do not need to sing Vande Mataram as the party cadre will be singing their own song.
2: श्रीमती सोनिया गांधी, देयर सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी and sitting president Mallikarjun Kharge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of
1: In fact, some more news coming in on the story. Congress MP spills the beans on Sonia's Vande Mataram diktat. Congress MP admits Sonia tried to stop Vande Mataram. The Bihar MP from Congress Party says that only two stanzas were adopted. And remember, Congress Party had initially claimed that Sonia Gandhi wanted a chair for Mallikarjun Kharge. She was not disrupting and trying to stop the rendition of the national song. But now, a Congress MP from Bihar has claimed that Sonia Gandhi was in fact stopping the recital of

0: of the Vande Mataram, but the leaders did not stop. So now different versions emerging from within the Congress party. The Congress party is clearly not in sync over the Vande Mataram row.
1: हमारे महापुरुषों ने जो डिसाइड किया था कि हम वंदे मातरम का जो दो पंक्तियां हैं शुरुआत में उसको गाएंगे, माननीय सोनिया मैडम ने इस बातों को बताने का हम लोग को प्रयास किया आज। दूसरा बात, आप तो प्रमाण थे, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया। जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
2: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा, पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। हाँ, पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
0: So different versions now emerging from within the Congress party. On one hand, Jairam Ramesh says that Sonia Gandhi was not stopping the recital of Vande Mataram, but was in fact asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for long. On the other hand, now another Congress MP from Bihar has admitted that yes, Sonia Gandhi was trying to stop the recital of the national song, but the leaders did not stop and the entire Vande Mataram was in fact sung. So the Congress party is clearly not on the same page as far as the Vande Mataram controversy is concerned. And BJP continues to mount its attack on the Congress party. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
3: You are watching India Today.

0: आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं, और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: मेक योर मीडिया प्लान स्मार्टर विद इंडिया टुडे लाइव टीवी ऑन योर कनेक्टेड डिवाइसेस। Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: And we're getting some breaking news. This is regarding the Congress Vande Mataram controversy. Now, Home Minister Amit Shah seeks Sonia Gandhi's apology over the Vande Mataram row. Amit Shah says that Sonia Gandhi disrespected the national song and Sonia Gandhi can't stand the glory of Vande Mataram and that the Congress must respect the national song. The BJP also claims that Sonia Gandhi tried to stop the full Vande Mataram verses. So now Home Minister Amit Shah is seeking Sonia Gandhi's apology over disrespecting and disrupting the national song midway on while Independence Day was being celebrated at the Congress headquarters yesterday.
1: Congress party ke mukhyalay par Vande Mataram ka gaan ho raha tha. चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा. हम सब टीवी पर देखते रह गए. 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है. सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है. आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी. कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए. कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.
0: So the BJP is mounting pressure on the Congress party, and now in the latest, Home Minister Amit Shah has slammed the Congress party, especially the senior leaders, including Sonia Gandhi. He's seeking an apology from Sonia Gandhi for disrespecting Vande Mataram, and he's saying that the Congress disrespected the national song and that Sonia Gandhi must apologize. The Home Minister has also said that Sonia Gandhi cannot stand the glory of Vande Mataram. My colleague Piyush Mishra is now joining us on this story. Piyush, the BJP is mounting pressure on the Congress party and now Home Minister Amit Shah himself has sought an apology from Sonia Gandhi over disrespecting and disrupting the national song midway.
2: Well, it is now becoming a huge political controversy here. Home Minister Amit Shah is seeking the apology from Sonia Gandhi. Remember that yesterday during the Vande Mataram, the rendition of Vande Mataram, Sonia Gandhi decided to stop this and saying that this is not our version. And now Home Minister Amit Shah is seeking apology over Vande Mataram Rao, where she is saying that Sonia Gandhi disrespected Vande Mataram and she cannot stand the glory of national song. At the same time, while attacking Sonia Gandhi, Amit Shah said that Congress must respect Vande Mataram, where it is also seen that they cannot stand the glory of national song. We'll have to see how the Congress is further going to clarify what the kind of comments that are coming from Home Minister Amit Shah.
0: All right, Piyush, do stay with us. So Home Minister Amit Shah has sought an apology from Sonia Gandhi over the Vande Mataram controversy, saying that Sonia Gandhi disrespected the national song and the Congress party must respect the national song. And he's now seeking an apology from Sonia Gandhi. Some more news coming in. BJP mounts attack on Congress over the Vande Mataram row. In Mengaluru, BJP has lodged a complaint against Sonia Gandhi. The complaint states that Sonia Gandhi disrespected Vande Mataram. Sonia Gandhi told the workers to stop the national song. BJP's Vikas Puttur files this complaint in Mengaluru. And the complainant has stated that the complainant will move high court if cops don't act, says cops must distance from political influence. So, complaint has been filed against Sonia Gandhi over alleged disrespect to Vande Mataram. BJP leader Vikas Puttur has lodged a complaint against Sonia Gandhi at Urva police station in Mangaluru, alleging that she asked for Vande Mataram to be stopped midway. And Puttur, who arrived at the police station with BJP workers, demanded immediate registration of an FIR and legal action against Sonia Gandhi. My colleague Sagar Raj is now joining us with more details on this. Sagar, trouble mounting for Sonia Gandhi as a formal complaint has also been filed in Karnataka's Mangaluru by a BJP leader. Give us more details.
2: What we get to learn is the BJP leaders in Mangaluru have filed a complaint saying that Sonia Gandhi disrespected Vande Mataram, and BJP leader Vikas Puthur has lodged a complaint against Sonia Gandhi at Urva police station, alleging that she asked for Vande Mataram to be stopped midway. And he has also alleged that the police have to go ahead and register an FIR and take legal action against her without any kind of partiality, because he claims that since there is a Congress government in the state of Karnataka, they might not go ahead and register an FIR. So he has filed a complaint, and he has also warned a private complaint in the High Court if police fail to act on that particular complaint which has been registered at one of the police stations in Mangaluru.
0: All right, Sagar, thank you for those details. So a complaint has been filed against Sonia Gandhi for allegedly disrespecting the Vande Mataram. This has been filed in Mangaluru in Karnataka. So the way sequence of events unfolded during the Independence Day celebrations at the Congress headquarters, it has snowballed into a massive political storm. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP has released another video of Congress MP and Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi from the same event, where he can be allegedly heard saying in the video that we do not need to sing Vande Mataram, as the party cadre will be singing their own song. Amid these claims from BJP, different versions of clarifications are surfacing from the Congress party. Earlier, Sonia Gandhi was only asking for a chair to be brought for Congress President Mallikarjun Kharge, who had been standing for a long time. Now, another Congress MP has said that Sonia Gandhi tried to stop everyone, but the entire Vande Mataram was recited by the leaders. The BJP alleges, meanwhile, that the recital was met with a casual attitude by Congress leaders. It also claims that Sonia Gandhi appeared to signal for the rendition to stop, while Rahul Gandhi, too, signaled that it should end. The BJP also alleges that several Congress leaders were inattentive during the recital.
3: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। और पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
4: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
5: ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरी धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है।
6: The Congress has no respect for the national songs, national symbols and national ethos. Vande Mataram, it is now everywhere, it has been decided to sing the full stanzas, the full length Vande Mataram. But Sonia Gandhi doesn't realize this and she, now they are trying to make some lame excuse on that. But definitely her behavior with regard to the behavior, her behavior during the rendition of Vande Mataram is highly objectionable and Bharatiya Janata Party condemns it.
7: वंदे मातरम का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को आप जबरन बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते, मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 25 से 28 मुझे इजाजत देता है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं है, शिर्क में आ जाता है, हम अल्लाह की वंदना करते हैं।
8: वंदे मातरम राष्ट्रगान मनु स्वीकार लिया, कांग्रेस ने स्वीकार लिया, बीजेपी ने नहीं स्वीकार लिया। वंदे मातरम 1836 साली काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये प्रथम रवींद्रनाथ टागोर यांनी वंदे मातरमचं गान केलं। सहा कडवी म्हणत भगतसिंग फासावर गेला का, किंवा सुखदेव फासावर गेला? वंदे मातरम आणि इन्किलाब झिंदाबाद, भाजपच्या लोकांना चा जो त्यांना जे इडियट म्हटलं जातं ते यामुळेच इडियट म्हटलं।
0: So on the occasion of Independence Day, the national song Vande Mataram was recited from the Red Fort in the national capital ahead of the Prime Minister's address. On the other hand, BJP has claimed that the national song was allegedly disrespected by the Gandhis by trying to stop it midway and not allowing the full recital. And during his Independence Day address, Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time. Listen in.
9: आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: And meanwhile, there's another controversy that has erupted over the national anthem. Congress leader Sandeep Dixit has sent a legal notice to BJP's IT cell chief Amit Malviya 2 days after BJP's official X account shared a video clip accusing Rahul Gandhi of insulting the national anthem during a Congress convention on August 13. The notice asked for the immediate removal of the content and also an unconditional apology from the BJP for spreading fake news regarding Rahul Gandhi because the Congress party claims that there was a technical glitch and the national anthem was played once again after it was sung entirely. BJP has shared a video in which Rahul Gandhi appeared on the dais, shaking hands with several other leaders and walking on the stage while the national anthem was being played in the background. This was the second time it was being played due to the technical glitch. BJP branded Rahul Gandhi anti-India and claimed that this showcases the mindset of Congress. Some more breaking news coming in. Big Dimagi Naxal Dangal rages on. Ex-UPA Home Minister P. Chidambaram calls self Dimagi Naxal. Chidambaram's counter to Modi jibe. BJP Punjab face Ravneet Singh Bittu hits out at P. Chidambaram. Bittu says that ex-Home Minister never wanted Naxalism to end. P. Chidambaram boasts, I am Dimagi Naxal. And Prime Minister Modi's Dimagi Naxal jibe triggers a political war. Prime Minister Modi had said that we have ended Naxalism, but Dimagi Naxals still exist. And they must be isolated, identified and isolated, to which now Ravneet Singh Bittu has responded saying that P. Chidambaram hails Dimagi Naxal tag. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that Prime Minister Modi was not referring to the opposition leaders, which the opposition leaders are claiming that he was referring as Dimagi Naxals to the opposition leaders, but it was not meant for the opposition, but for those who support separatists and who support Article 370 and anti-India forces.
10: Goli

0: है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं। और जो आपने बात कही, आज 80 साल कल हो चुके हैं और लोगों के तो ये दिलो दिमाग में ये वंदे मातरम हर वक्त चलता है। और मैं इस चीज से हैरान हूं भी किस तरीके से सोनिया गांधी जी जो मतलब उन्होंने खड़गे साहब एक तरह की डांट लगाई, वो कहते हैं ना, बात करते हैं कई बार कास्ट की ऐसी, मतलब वो उन्होंने किस तरीके से संभाला, उन्होंने कहा आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई, क्योंकि इस पूरे 140 करोड़ और पार्लियामेंट ने जब ये पास किया, अभी ये पूरा इसकी जो लाइनें हैं पूरी गाई जाएंगी, उनको ये था भी ये गांधी फैमिली और कांग्रेस ने और हमारे परिवार ने इस पे मोहर नहीं लगाई तो किसी की हिम्मत क्या हो।
1: And now shifting focus, some more news coming in. India's desi and deadly loitering munition, first indigenously powered loitering munition, first indigenous jet powered loitering weapon. Divyastra MK3, India's precision strike system, 100% Indian from engine to airframe. India's homegrown jet engine takes to skies. India's desi defense dhamaka startup Divyastra MK3, designed and developed in India itself, jet power plus AI plus autonomy, India's new strike. So Atmanirbhar defense shines big. So this is India's desi and deadly loitering weapon, and this is the first indigenous jet-powered loitering munition, Divyastra MK3, which is India's precision strike system. India has successfully conducted the maiden flight of the Divyastra MK3, described as the country's first fully indigenous jet-powered loitering munition. It is developed by Indian defense tech company Hoverit. And the system was designed, developed and manufactured entirely in India. Its biggest highlight is the indigenous jet engine developed by DG Propulsion, which powered the munition during its August 11 test flight in Uttar Pradesh. The Divyastra MK3 combines jet propulsion with autonomous flight controls, AI-enabled target engagement and precision strike capability.
2: इस वक्त जब देश और दुनिया में युद्ध का माहौल है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत ने लॉटरिंग मुनिशन के क्षेत्र में एक ऊंची उड़ान भरी है। हम बात कर रहे हैं दिव्यास्त्र मार्क 3 के सफल उड़ान की। भारत के एक प्राइवेट कावा यूएवी कंपनी का दावा है कि कानपुर में दिव्यास्त्र मार्क 3 ने एक सफल उड़ान भरी है, जिसमें स्वदेशी जेट पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी इंजन और सिस्टम के जरिए दिव्यास्त्र मार्क 3 का सफल परीक्षण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर लॉटरिंग मिशन की बात की जाए तो हाल के दिनों में इसका काफी इस पर चर्चा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल किया दुश्मन के खिलाफ। ये एक ऐसा हथियार होता है जो दुश्मन के टारगेट पर कुछ समय मंडराने के बाद उस पर हमला कर देता है। इस वक्त दुनिया में अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाहर भारत की कई स्वदेशी कंपनियां इसका परीक्षण कर रही थी, लेकिन पहली बार कानपुर में सफल परीक्षण के दौरान 11 अगस्त को दिव्यास मार्क 3 लॉटरिंग मिशन का सफल परीक्षण हुआ है, जो पूरी तरह से पैरामीटर पर खरा उतरा है। और एक तरह से अगर इस स्वदेशी क्षेत्र में देखें तो एक बहुत बड़ी उड़ान है दिव्यास मार्क 3 की। और आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय सेनाओं को इस तरह के लॉटरिंग मिशन की बहुत जरूरत है, और आने वाले दिनों की जो युद्ध की तैयारियां हैं वो स्वदेशी हथियारों के दम पर लड़ने की बात की जा रही है, ऐसे में दिव्यास मार्क 3 की ये सफल परीक्षण कई मायनों में खास है।
1: So India has successfully conducted the maiden flight of the Divyastra MK3, described as the country's first fully indigenous jet-powered loitering munition. It is developed by Indian defense tech company Hoverit. The system was designed, developed and manufactured entirely in India. Its biggest highlight is the indigenous jet engine developed by DG Propulsion, which powered the munition during its August 11 test flight in Uttar Pradesh. The Divyastra MK3 combines jet propulsion with autonomous flight controls, AI AI-enabled target engagement and precision strike capability. And the program began at the start of 2026 and reached its

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। ये उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा।

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्यां दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: मेक योर मीडिया प्लान स्मार्टर विद इंडिया टुडे लाइव टीवी ऑन योर कनेक्टेड डिवाइसेज। Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: श्रीमती सोनिया गांधी, देयर सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड सिटिंग प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, व्हाइल इट वाज बीइंग संग, दे वर नॉट अटेंटिव, रादर देन दे वर कैजुअली टॉकिंग टू ईच अदर, गिविंग रिमार्क्स टू ईच अदर, इवन कॉलिंग समवन, दिस शोज द अटर डिसरिस्पेक्ट बाय कांग्रेस पार्टी towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram.

0: This is from Kanpur now. There's total chaos that in fact erupted over a bizarre discount. What are we talking about here? Crowd gathered for rupees 16 shopping bonanza. And you can see the kind of stampede-like situation that panned out over this special offer. Rupees 16 discount that had been put up. Massive crowd jostles to get to the store so that they can avail this very offer. Dozens, in fact, in the process suffered injuries. Cops dispersed the crowd. As you can see, heavy deployment was put in place. But by that time, a lot of them had already gotten quite severely injured with the kind of crowd that had assembled to just avail this very discount. And you can see the aftermath, the visuals that have come in, the entire place in complete chaos and in tatters because of this entire episode, the stampede-like situation that unfolded here. But this is from Kanpur, these visuals that we're bringing to you at this point on your screens. We did see heavy police deployment who in fact brought the situation under control. 16 rupees, I beg your pardon. That's the discount. That was the offer that was in fact put up and advertised by this very store, which triggered this entire episode. Ashish Srivastav joining me on the broadcast with more details on the same. Ashish, a very good afternoon to you. Sabse pehle, 16 rupay ka ek discount ka ek advertisement dekke log aa gaye the yahan pe, but kafi bhari matra mein wo dikh rahe the. To iske wajah se pehli baat to jo store जिस स्टोर ने इस डिस्काउंट को एडवर्टाइज किया था, क्या उन्होंने कोई ऐसे सिक्योरिटी का व्यवस्था या फिर कुछ भी ताकि लोग जैसे ही इकट्ठा हो इस तरीके का आउट ऑफ हैंड सिचुएशन ना बन जाए, ऐसी कोई अरेंजमेंट्स की थी उन्होंने कि स्टैम्पीड ना हो ऐसे?
1: उन्होंने बिल्कुल भी इसकी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि आलम जो शॉप है और उसके जो ऑनर हैं आलम, उन्होंने पूरी तरीके से 11:59 यानी कि 12 बजने से पहले ही इसको एक न्यूज कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे फ्लैश किया और 16 रुपए का ऑफर किया कि जो भी जितना चाहे उतना ले सकता है. इस तरीके का एक ऑफर था और उसको लेकर लोगों में जैसे ही वो सर्कुलेट हुआ तो वो इतनी उम्मीद नहीं थी उनको कि इतने ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे. एट द मोमेंट तो वो सैकड़ों की तादाद में जिन जिन लोगों के पास वो ऑफर पहुंचा वो सभी मूव कर दिए उस दुकान की तरफ, और वहां पहुंचते ही स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन आ गई. और जिसको लेकर जब इतनी तादाद में, चूंकि बताया गया कि आलम के जो बेटे उसका भी बर्थडे था उस दिन और 15 अगस्त था, 15 अगस्त का भी था, बहुत सारी चीजें थी, उसको लेकर भी लोग इस ऑफर को लेना चाह रहे थे कि जितना चाहे उतना भर लें. और इस 16 रुपए के लिए ही लोगों में एकदम भगदड़ सी मच गई. और उसके बाद जब वहां पर पहुंचे तब पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, पुलिस को यहां तक अनाउंसमेंट करना पड़ा और लोगों को समझाना पड़ा. इसके बाद जब जैसे ही इतने ज्यादा लोग पहुंचे तो आलम ने अपनी दुकान पर शटर बंद करके वहां से फरार हो गया, भाग गया. और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी परेशान हो गई, लोग भी परेशान हो गए, स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई कि 16 रुपए में लेने को लेकर तो उस पूरा एरिया
0: वो तो आशीष विजुअल्स में दिख ही रहा है द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट अनफोल्डेड और जैसे हालत में छोड़ के गए लोग इस पूरे दुकान के सामने वो दिख रहा है. हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वेल व्यूअर्स, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पैंड आउट इन कानपुर एंड वी ब्रिंग यू दोस वेरी अपडेट्स. बट फॉर नाउ वी शिफ्टिंग आवर फोकस, मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, लेट्स क्विकली टेक अ लुक. Taking you down south next to the state of Karnataka, specifically in Mysuru. These are hotels in Mysuru that now face surprise food safety checks. 9 kgs of expired chicken seized from Rio Meridian Hotel. 68 kgs of meat seized during these inspections across 4 hotels. In Mysuru, what we're learning of, 4 kgs of mushroom seized from the Star Hotel. Officials conduct a city-wide inspection drive. KFC City Center was also inspected in these raids and post the complaints. Customers alleged that chicken peri-peri leg was stale. KFC kitchen, cold storage, freezer, all of them have been inspected. Karnataka Health Minister now comes out to say that the KFC outlet has been sealed. It's in Mysuru, Nanjangud, in fact, Taluk, to be specific, under food safety scanner. 3 resorts inspected, 3 notices issued, 5 food samples collected during the inspection drive. 16 kgs of expired and perishable food seized and discarded. Listen in to the responses that have come in so far on this entire episode first.
2: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we were close.

0: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं।
1: তার পরিবার গতকাল রাতেই রিয়্যাক্ট করেছেন মেল করে মাননীয় সোনিয়া গান্ধীকে, মাননীয় মল্লিকার্জুন খাড়গেকে জানিয়েছেন। তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করেন। এই হাই অ্যাপ্রিজমেন্ট কা পলিটিক্স হে জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হ্যায় ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হ্যায়। এক খাস ভোট ব্যাঙ্ক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হ্যায়।

0: की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and all the top stories of the day. Thank you for tuning in.
2: You are watching India Today.

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।

0: लवली, थैंक यू वेरी मच।
1: हम दुश्मन को ये बताने के लिए लड़ रहे हैं कि हम अपनी पहाड़ियां तुम्हें थाल में परोस के नहीं देंगे।
2: फॉर्मेशन फाइटर जेट्स की नहीं, फाइटर्स की होती है। तो गोल्डन एरोस, क्या हम तैयार हैं?
3: हमारे भाइयों के सम्मान में हम लड़ेंगे।

0: Our focus this hour is on a political row that's erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's pushed for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre of a fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojol Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला? वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में, आप उसको कैसे देखते हैं?
1: एक्चुअली देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया। नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया, सोनिया जी ने वही किया। हम इसका जो क्या बोले उसको, हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है, एकदम घृणोने आदमी है ये। वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
0: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो उनके बगल में खड़े थे, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्र गीत के बीच में तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
1: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के इधर-उधर देख रहे थे, वो शायद बगल में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगल में तो राजीव आपका
0: राहुल गांधी
1: जी भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था। उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम का यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना दिन तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
0: जी।
1: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने।
0: कल
1: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
0: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ा बात, ये पूरा गलत गलत एनालिसिस है। ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है। ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे उस समय दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाह किसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोष है जिन्ना साहब जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुमिमा शक्ति हृदय तुमिमा भक्ति, ये जो बात है ये वो लोग महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
0: जी।
1: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
0: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
1: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
0: जी, आपका बड़ा भाई जो है उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है, या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे, कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
1: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे, एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसके अपोल तो जानबूझ के किया, जो कि तो बच्चा तो नहीं है गलती।
0: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
1: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
0: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
1: 100% खाए को ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया, वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। हम कुछ कर पाए ना पाए हम इसमें सहमत नहीं है।
0: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
1: हमरा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलोजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलोजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
0: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज वॉट The great grandson of Bankim Chandra Chattopadhyay has to say. He has made some very stringent points. He has demanded an apology, an unconditional apology, and not an apology on paper, but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Just to put things into context, let me quickly take you into this report to just bring you all of what's happened since yesterday when the event took place.
2: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
3: 80 saal ke baad Bankim Babu ka ye amar mantra amar gaan jab phir se सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
4: তারা ক্ষমা চেয়ে নিন ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন এটাই আশা করি এই হাই অ্যাপ্রিজমেন্ট কা পলিটিক্স है जो 15 साल মমতা ব্যানার্জী ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
2: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
5: Sonia Gandhi ने जो हरकत की है, वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं।
2: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief but later admitted that Sonia wanted Bande Mataram to stop.
6: पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहां कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
7: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
2: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
8: Mere pyare deshvasiyon,
2: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
8: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
2: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
0: Shifting our focus to Jharkhand now, students protesting against alleged irregularities in Jharkhand's recruitment exams have burnt effigies of Rahul Gandhi, accusing the JMM Congress Alliance of failing to take concrete action on their demands. Students are also carrying the effigies of Chief Minister Hemant Soren and RJD leader Tejaswi Yadav. This is what we are now learning about. Take a look at these visuals that have been coming in while students have been protesting there for almost a month long now. We've seen there have been episodes where they've conducted marches. They've come across with clashes against the police as well. Devendranath Mahato, along with a few other students, has been on a hunger strike. But the student protest still continues. And it's only escalating with each passing day. In fact, Hemant Soren has been given added security because August 20th is when they have said they will get out Chief Minister's residence if they do not, if the government does not come in to accept their demands. Jharkhand's recruitment exam, that is the very trigger point of this entire protest. And now it's come out to escalate to this extent. Let us connect to Satyajit Kumar, who's joining us on the broadcast with more details and the latest updates coming in from the protest side. Satyajit, this is escalating with each passing day. What was initially a peaceful protest now has some signs of disruptions even from the protester side. Take us through the details, please.
9: Of course, we are standing at the iconic Albert Tikka Chowk, where the effigy of Rahul Gandhi, Hemant Soren and Tejaswi Yadav have been burnt by the protesting students. They said that they have abided to the policies of Mahatma Gandhi. Now they will opt the way Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh did. They have burnt the effigies and they are all set to intensify the protest. They have put an ultimatum before the government till 18th of the August. If their demands are not conceded, they have demanded the cancellation of 11 to 13 JPSC and a CBI probe. If it is not being done, they have said they have clearly made it, that they are going to gherao the CM house. We are joined by many protesting students. They are standing here. We'll speak to them. आगे का क्या कार्यक्रम है? आप लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी देख लिया आप?
10: एक रामायण का बहुत अच्छा चौपाई है, बिना न मानत जल्द ही जड़, गए तीन दिन बीत होए राम सको बोलत है। ये जो कहावत है राम का, राम भय, हाँ भय बिनु होत ना पीर, तो ये जो चौपाई है ये सिर्फ अभी 10 तारीख का जो विधानसभा घेराव था वो सिर्फ झांकी था, 20 तारीख अभी बाकी है। ये स्टूडेंट का गुस्सा इतना हद तक बढ़ चुका है, ये देखिए बोलते बोलते सरकार से मांग करते करते ये राहुल गांधी
11: स्टूडेंट्स आर बर्निंग स्टैच्यू ऑफ हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव एंड राहुल गांधी बिकॉज इंडियन लाइन्स गवर्नमेंट इज इन रोल इन झारखंड एंड सिंस लास्ट 25 डेज स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग साइलेंटली एंड पीसफुली बट फ्रॉम नाउ वी हैव गिवन द अल्टीमेट ऑफ 18
9: आर गोइंग टू 18

0: ultimate of 18.
1: We are going to intensify the agitation.
0: Yes, yes, sir. We have given the ultimate of 18. If our demands are not fulfilled, we will go to CM House and we will sit there on 20.
1: So they are going to sit around the CM House. They are going to block all the ways that leads to CM House. We are joined by more students. Bataiye, kya karna hai 18 tarikh ko?
2: Actually, Hemant Soren has fucked up all the students. Actually,
3: so. Awaaz do, gali gali mehsoor hai.
1: Hemant Soren kya karkam hai aage ka?
3: ये पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है झारखंड के छात्रों और नौजवानों का हक अधिकारों को झारखंड बनने से लेके अब तक रोका गया, उसे लूटा गया और 20 लाख 40 लाख में बेचा गया। इसके खिलाफ ये आंदोलन है और ये आंदोलन साफ स्वच्छ और जाति धर्म पार्टी संप्रदाय सबसे आगे उठकर है और पहली बार झारखंड का यह उलगुलान है। एक उलगुलान हुआ था झारखंड का निर्माण के लिए और यह दूसरा उलगुलान हुआ है झारखंड का संपूर्ण निर्माण।
4: इस बार झारखंड से छात्रों ने उलगुलान कर दिया है। अगर सरकार नहीं झुकती है तो हम लोग उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग 22 दिन से इस अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग छात्र बैठा हुआ भारी बारिश में धूप में कैसे रह रहे हैं, ये छात्रों बहरा हो गई है। जब तक ये छात्र हमारी बात नहीं सुन लेती इस तरह हम लोग यहाँ से
3: जिस तरह लोग मुर्गी पालते हैं।
2: हेमंत सोरेन बहुत डरे हुए हैं कि अगर ये मैंने अगर रद्द कर दिया तो सब कुछ मेरा खत्म हो जाएगा, मेरा जितना सामियाना है आलिशान जो रह रहे हैं
3: मुर्गी
2: सब कुछ खत्म हो
3: जाएगा। मुर्गी से भी बेहतर मुर्गी
1: में प्रिया बेहतर जीवन हम लोगों को। दिस आर द सेंटीमेंट्स दैट इज बीइंग सरफेस्ड बाय द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। दे हैव सेड दैट दे केप्ट ऑल द पेशेंस, दे ट्राइड टू पे हीड टू व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग सिंस द लास्ट 22-23 डेज, बट नथिंग हैज कम आउट। नाउ दे हैव बीन फोर्स्ड टू इंटेंसिफाई द स्टियर and they will make it aggressive if their demands are not conceded by 18th of August. They are going to block the CM House. This is what they say. Back to you, Priya. Can you hear me?
5: Yes, Satyajit, we heard all of the students' voices along with all your updates that you brought to us from the protest site itself. Viewers, you can see the kind of escalations. And when we speak of escalations, it's effigies being burnt at this given point. However, they have said that they will intensify the protests further if their demands are not met. So where does the Jharkhand protest now head toward? Will there be more disruptions in Ranchi? That's something we will keep a very close track of. But for now, viewers, we are wrapping up the bulletin right here, and we will keep tracking all of the top stories for you through the evening. Thank you for tuning in. Stay tuned to India Today.
6: You are watching India Today.

0: session of Parliament was a near total washout. The distrust between the opposition and the Treasury benches was on full display. And that is also continuing now outside Parliament. What was on government's agenda? And what is the government's game plan? Now, joining me is Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. Kiran Rijiju ji, shukriya humse baat karne ke liye. I'm going to begin with the numbers that you gave. You said that Lok Sabha productivity was at 19%, Rajya Sabha at 39.17%. Nine of the bills passed by the lower house, only with the minister speaking. My question is that the parliament is for scrutiny. It is for behas. Us par charcha honi chahiye thi, jo nahi hui. To kya parliament chalana aapki sarkar ke liye ek formality hai?
1: Shukriya ji. Sabse pehle to sarkar ke drishti se, jo business transaction karna tha, humne puri ki. So, from business point of view, we passed 12 very important critical bills. So, we are happy that the government business has transacted. But from the parliamentary democracy, if we say that have we run the house as per the norms of the parliamentary democracy, then definitely no. Because as a parliamentarian, I would definitely want to scrutinize the bills. And all the members should get enough time to speak, to suggest, intervene, and also, if necessary, to amend. So from government's point of view, the bills are passed. But who is in the loss? It is the opposition parties who could not put forward their views during the discussion because they did not take part in the discussion. So my view on this entire monsoon session is in two parts. Purely from the governance, government's point of view, the business transaction was satisfactory. But from the parliamentarian point of view, and in the view of being the largest parliamentary democracy in the world, we did not debate, we did not discuss enough, especially in the Lok Sabha. In Rajya Sabha, the discussion was partial because entire ruling party, the NDA partners, they took part in the discussion. And some of the opposition parties also did take part in a discussion. But the main opposition party, Congress and Trinamool, and few of them, they didn't take part.
0: You know what happened before this session? You entered the monsoon session after historic Bengal victory. There were defections which had happened in TMC, in the Shiv Sena. Aam Aadmi Party MPs had also defected and joined the BJP. There was this confidence with which government entered the monsoon session. You were confident ki aap delimitation bill pass karwa denge. Delimitation bill ka kya future hai? Pehle mera ye sawal hoga. Aur FCRA, wo to ek simple majority ke saath bill pass ho sakti thi. Lekin opposition had an upper hand in getting it sent to the JPC.
1: Nahi, sabse pehle to humne महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को मानसून सेशन में ही पारित करेंगे हमने कभी नहीं कहा क्योंकि यह संवैधानिक मामला है और संविधान संशोधन चाहिए जिसके लिए पर्याप्त संख्या और सदन के अंदर में एक माहौल होना चाहिए आप वोटिंग जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो उसमें हाउस इन ऑर्डर और डिविजन वोटिंग होते हैं तो उसमें शोरगोल में आप संविधान संशोधन बिल पारित नहीं कर सकते हैं और हमने कहा नहीं कि अभी हम तुरंत पारित करने जा रहे हैं लेकिन हमारे पास संख्या है लेकिन संख्या होते हुए भी हमने जबरदस्ती नहीं किया जैसे एफसीआरए का बिल के बारे में आपने जिक्र किया
0: एफसीआरए लेकिन सर एक मिनट मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी संख्या की बात जो आप कर रहे हैं यू हैव द नंबर्स टू गेट द डिलिमिटेशन पास्ड विच इज एसेंशियली अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच रिक्वायर्स 2/3
1: यस बट वी डिड नॉट press for it because we thought let there be more consultation within the parties. तो हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया देखिए हम बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं ऑपोजिशन कुछ भी कहे उससे कोई हमारा छवि बदलने वाला नहीं है हर बिल हमने जबरदस्ती पास नहीं कराया बिल पारित होने से पहले हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल को बताया समय आवंटन किया और फिर हमने बिल को लिस्टिंग करके हाउस में रखा। कोई भी ऐसा एक घटना नहीं है जहां हम ऑपोजिशन को पूछे बगैर कोई भी बिल पारित किया हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, कई ऑपोजिशन एमपीज मेरे पास निजी तौर पर आए और ये कहा कि कृपया राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और कुछ लोगों से बातचीत करके बिल को चर्चा कराइए, हम लोग बोलना चाहते हैं
0: एफसीआरए पे,
1: नहीं कोई भी बिल, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से बहुत लंबा चर्चा की, अखिलेश यादव जी से भी चर्चा की और बाकी ऑपोजिशन पार्टी के कई नेताओं से मेरा बातचीत बहुत अच्छी तरह से हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो सदन में चर्चा के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि बिल पे चर्चा नहीं होने से ज्यादा नुकसान ओपोजिशन पार्टी का है, क्योंकि सरकार का मत तो ऑलरेडी हमने कैबिनेट में बिल पारित करते हैं, फिर कैबिनेट से क्लियर करने के बाद वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं, तो सरकार का मत तो बहुत साफ है। और कुछ बिल्स को हमने स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में भी भेजे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कहते हैं कि सेशन वॉश आउट हो गया, सेशन वॉश आउट नहीं हुआ, सेशन पूरी तरह से हमारे लिए कामयाबी रहा। 12 बिल्स पारित किए, एक बिल पर चर्चा हुई, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जाम्स, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत कठोर कानून बनाया, उसका चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुए। हाँ, इतना बात जरूर है कि पेपर लीक को लेकर के इतना मजबूत कानून बनाया तो ओपोजिशन उस पर नहीं बोले, वो बाहर का इधर उधर राजनीति करने लगा, लेकिन चर्चा हुई।
0: लेकिन सर, इफ ऑपोजिशन वॉन्ट्स डिस्कशन ऑन सर्टन इम्पोर्टेंट इश्यूज विच ऑल्सो इंक्लूड्स चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है,
1: मैं
0: तो फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
1: अरे एक बात यह साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा, तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मागर्म विषय बना, तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया। अरे जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मेच्योर्ड है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा। देश में कितना आंदोलन हुए हैं, तेलंगाना राज आंदोलन से लेकर के कई ऐसे आंदोलन हुए, कितने सौ सौ लोग गोली से मारे गए।
0: लेकिन
1: आप सुनिए, उसमें कोई भी रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ, हमारा तो शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं। पैलेट गन्स तो हजारों में सौ सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा? पैलेट गन्स तो एक गोली नहीं होते हैं। और इतना बड़ा आंदोलन में आप बताइए,
0: थ्री पीपल हु केम ऑन रिकॉर्ड सर, देयर टू ऑफ देम हैव पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो।
1: तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, हम तो इसमें अभी कुछ कहना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस के दौरान में पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया, कई जगह में कांग्रेस के जमाने में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, यहां में कोई पैलेट गन से कोई मौत, जैसे कि मैंने कहा अगर वहां 4-5 हजार लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पैलेट गन्स चलेगा तो कितने लोगों को चोट लगेगा? 300-400 लोग को चोट लगेगा,
0: नंबर ऑफ देम हुज इंजरीज हैव बीन रिपोर्टेड।
1: वो तो मैं इसलिए
0: कम ऑन रिकॉर्ड आल्सो टू टॉक अबाउट देयर इंजरीज।
1: आप बताइए कि कोई मौत नहीं हुआ, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, इस एजिटेशन में किसी का मौत नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव तोड़ के कोई अस्पताल में सीरियसली इंजर्ड ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब पुलिस ने कितना प्रोफेशनली मैनेज किया है। अब इसको तो थोड़ा तो आपको मानना पड़ेगा ना, सही बात है कि अगर 30-40 हजार लोग आता है एक जगह और जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए करते हैं तो क्या पुलिस उसको रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे
0: but,
1: क्या
0: बट वॉट राहुल गांधी सेड हियर दैट ही वॉन्टेड अ स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर
1: राहुल गांधी जी को विश्वास मत कीजिए, वो बिना सोचे बात करते हैं। लीडर ऑफ ओपोजिशन होने के नाते मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, लेकिन बिना सोचे अगर बात करेगा तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी खुद ही बोला कि मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट दो। अरे स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ऑपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का।
0: सो इट गॉट स्टक बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड ऑपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर रूल?
1: नहीं, स्टक नहीं है, कांग्रेस पार्टी माना ही नहीं है। हम तो स्टक नहीं ना, हम तो पेशकश किए, चर्चा करेंगे।
0: बट सर, होम मिनिस्टर अमित शाह एज द कांग्रेस इज सेइंग एंड ही ऑफर्ड ऑन 12th दैट ही विल सिट फ्रॉम दैट डे एट 3 PM।
1: ऑफर नहीं किया, पहले किया मैंने
0: 3 PM।
1: होम मिनिस्टर ने कब ऑफर किया? जब मैंने बार बार कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, मैंने सदन में भी कहा, बिजनेस एडवाइजरी में भी मैंने कमिटी को जानकारी दिया कि हम एजुकेशन जो स्टूडेंट्स का है चर्चा के लिए तैयार है। होम मिनिस्टर तो बाद में इसलिए लिखा पत्र स्पीकर को, इसलिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि वो मान ही नहीं रहा है। तो मैंने तो सरकार की ओर से मैंने कह दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है और पूरी चर्चा डिटेल में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो घंटे बात करेंगे। देश को सुनना चाहिए ना, देश को जानकारी होना चाहिए। हम तो जवाबदेही सरकार है, हम तो चुने हुए सरकार है, तो लोगों को हमको जवाब देना होता है और चर्चा ही नहीं होने देते हैं। तो ये प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से शुरू होता है। कांग्रेस के एमपी लोग खुद कहते हैं कि चर्चा होते तो बहुत अच्छा था, उनको बोलने का मौका मिलते। कांग्रेस में भी कुछ एमपीस हैं तकिया पकड़ के वो नाराबाजी नहीं करते हैं, कुछ लोग को ही करवाते हैं।
0: बट मिस्टर रिजिजू, व्हेन द बीजेपी वाज इन ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट, डिसरप्शन वाज सीन एज लेजिटिमेट।
1: प्रोटेस्ट इज लेजिटिमेट, हु इज सेइंग देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेस्ट? यू प्रोटेस्ट टू सीक गवर्नमेंट्स अटेंशन और गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स। हियर गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कमिंग आउट एंड सेइंग दैट वी आर रेडी टू डिस्कस, वी आर ऑफरिंग ए डिस्कशन। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेस्ट?
0: मारिया,
1: यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इन दिस कंट्री एनीबॉडी कैन प्रोटेस्ट एनीवेयर, दिस इज देयर डेमोक्रेटिक राइट। एवरी इंडियन हैज एब्सोल्यूट राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनीबॉडी, बट पार्लियामेंट इज अ प्लेस where few MPs have the privilege to speak. If parliament is also used as a battleground for protest only, then where will you speak? The privilege which the MPs have received from the constitution has been demolished by this irresponsible behavior of the Congress party.
0: But did you sense that while, you know, during the course of this monsoon session, that what you had hoped was a divided opposition, wo nahi dikha aapko? Because of the crackdown which happened against protesting students on 20th July, everything changed.
1: See, Maria, again, I am telling you, the protest in Jantar Mantar, although many people know it is illegal protest, but we did not do anything. The court had said that protest in Jantar Mantar is not allowed. But despite that, they went on protest. Did any force was used? No.
0: On 20th July?
1: That is when they marched towards parliament. You have to clearly demarcate the level of tolerance where police had to break it to use force. That is only when they march towards the parliament. So the whole country has to know, as long as the protest is peaceful, not a single force or any coercion was used. They were protesting. Does it mean that they will be allowed freely to march inside the parliament? How, you tell me, how will you prevent the march of those people where some of them are from the background we know, the anti-social elements, and many of them are party workers, genuine students? We want to hear them out. Genuine students are always right. But then who are there in the protest? It is the Communist Party. वो दपली बजा बजा बजा करके जो सुबह सुबह वहां गाना गा के घूमते रहते हैं, वो तो आप कहां से मालूम है? अरे भाई, स्टूडेंट नहीं है वो, दे आर नॉट स्टूडेंट।
0: इफ दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, हाउ आर दे नॉट स्टूडेंट्स?
1: इफ यू आर ए स्टूडेंट, यू मस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज ए रेगुलर स्टूडेंट। दिस वन ग्रुप कॉल भीम आर्मी, समाजवादी, आम आदमी, दे वेर देयर थ्रू आउट द एजुकेशन. स्टूडेंट्स वेर देयर, बट स्टूडेंट्स वेर मच लेसर इन द नंबर्स. एंड कांग्रेस, यस आई कैन से दैट कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोटेस्ट. कांग्रेस लीडर्स डिड विजिट, बट कांग्रेस लीडर्स डिडंट टेक पार्ट इन द protest, student protest. But in the name of student protest, who all were there misusing the students, misguiding them, and also taking opportunity, and they tried to take the lead, and you know, they tried to encourage the students to march towards the parliament.
0: Interestingly, Mohan Bhagwat, RSS chief, has said that Gen Z is honest, emotional, deeply patriotic, and their grievances are genuine.
1: That is what Prime Minister has already said, that we have to listen to the young generation. Of course, Gen Z is not our concept. It's some Western innovated concept. But still, if you count it, that age group, young group, we have to listen to the students. They are the future. But why some political parties are trying to misuse the students? Abhijit Dibke, he's an Aam Aadmi worker. Everybody knows that.
0: But there are.
1: Are you aware of that?
0: But there are also those who are associated with them who may not be Aam Aadmi Party workers.
1: I'm not saying the protest is bad. What I'm saying is some political parties, some political leaders whose political future and political standing has completely gone, they want to revive their political fortune through the student protest. That is not good.
0: But Mr. Riju, as a young parliamentarian yourself, you've always supported the youth of the country.
1: See,
0: then shouldn't you be more proactive and agree with what Mohan Bhagwat ji said, that they are our own people?
1: Maria, I'm once again saying, Mohan Bhagwat ji, what he said, you quoted rightly. What I'm quoting is Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has clearly told all of us, he told the nation, he addressed the students saying that we will listen to the students, except that let us not abuse each other. Let us conduct ourselves in a civilized manner, more civil in our approach. And we are in a democracy. If you don't protest, if you don't resist, if you don't accuse, if you don't criticize the government, where will you do it? We welcome it. We have come through so much of turbulent in the past. We were in opposition for last 50 years, more than 50 years. We never misused any agitation to propel ourselves into the government. I myself have walked for months and months and months in the villages. That's why, don't tell me I'm young parliamentarian.
0: Okay.
1: I had enough of my experience in the parliament, and I can definitely say that I'm upset because the parliamentary ethics, which we all love to follow, the Congress party has totally broken the parliamentary ethics. They have conducted themselves in such a way that I'm very upset. I'm very sad. As a parliamentary affairs minister, I tried to bridge the gap, but the
0: how
1: Congress
0: many
1: party
0: times did you meet and cross across the aisle, go across the aisle, go
1: it's
0: across to
1: often.
0: The opposition parties to hold meetings? Kitne baar aapne koshish kiya? Kitne baar aap mulaqat kiye?
1: Main to Rahul ji se bhi kamre mein bhi lagbhag ek ghante hum baat kiye, aur aana jana mein bhi thoda thoda baat to hote rehte hain. Main telephone se bhi Rahul ji se mera baatchit hui hai. Priyanka ji ko maine bola. Priyanka ji ko to main itna tak bola to aap to zyada samajhdar lagti hain, kam se kam aap to aa jao baatchit ke liye aur डिबेट डिस्कशन के लिए आप आ जाइए. फिर कांग्रेस के और कई नेता हैं, वेणुगोपाल जी, सबको मैंने बात किया. मेरा भाई, छोटा भाई समान गौरव को मैंने कितना बार बोला, थोड़ा समझाओ राहुल जी को.
0: बट यू नो व्हाट इज आल्सो प्लेइंग आउट इज वेरी वेरी कंसर्निंग ट्रेंड वेयर वुमेन आर ऑलमोस्ट बीइंग यूज्ड एज टूल्स फॉर यू नो फॉर स्कोरिंग पोलिटिकल पॉइंट्स. व्हाट प्लेड आउट एट कांग्रेस पार्टीज इवेंट यस्टरडे, and then a counter which came from your party colleague and a former and a present member of parliament, it appears that women, even in positions of power, women leaders have become fair game.
1: Maria, we will always ensure that we don't do anything which will show disrespect and which will hurt the dignity of women. We are extremely careful about that. Yesterday, what Rahul Gandhi ji did was very unfortunate. In fact, it's very despicable. He had conducted in such a way that demean his own position. Rahul Gandhi ji is the leader of the opposition, and he's also son of former Prime Minister. Prime Minister represents the country. Prime Minister is the face of the country. By ridiculing Prime Minister's position, you are actually ridiculing your own position. It's demeaning the position which he holds. It's very unfortunate. I think because of such conduct, people will fail to trust Rahul ji, and people will not take him seriously if he continues to conduct in such manner.
0: But the language which was used by your party colleague in response to the outrage which came.
1: Which response?
0: Nishikant Dubey.
1: No, Prime Minister didn't say anything. None in the cabinet had used foul language. Nobody in the party president or senior functionary said anything. I cannot comment about everything or everybody, but I can definitely say that the responsible people in the party, especially the ministers, we never use such words.
0: You know, I have a couple of more questions, and this is a question that I'm asking to the former law minister, also a lawyer. How do you look at the chairman of Bar Council of India and your party MP, Manan Mishra's directive?
1: What directive?
0: Which he said that Nalsar students will not be allowed. And then, of course, there was withdrawal after the outrage. Do you see that this kind of collective punishment which was announced?
1: No, that I think I have not gone detail into that. The chairman of the Bar Council of India can respond to your question. But what I can say is, we must be tolerant to each other. We all must respect each other. Chief Justice of India is head of the Indian judiciary. His position has to be given due respect. Every institution will have to maintain its dignity. If few groups in any institution tries to take a course which is motivated or influenced by the ideology, then it will do lots of harms to the institution itself. If you don't have the capacity to listen to the person of the opposite view, then it's not good for the democracy. And when it comes to judiciary or the Supreme Court judges or anybody, I think we have to be extremely careful. I cannot comment on that incident because I have not really got information about that in details.
0: Universities and campuses, spaces for raising concerns and protests.
1: That's what I'm saying. No? You should raise your concerns and all. How can you prevent somebody from coming to the
0: bar?
1: No, to the institution or anywhere. See, what I'm saying is, every institution will have lots of people with diverse background, different ideology. If you are not prepared to invite, or if you are there to prevent the entry of any person whom you don't like, the institution cannot run that way.
0: My last question to you is coming from what we have seen over the last few days on social media. A lot of people from Arunachal Pradesh have put out videos, and even Rahul Gandhi has now raised it. And his words are, and I'm quoting you him, Arunachal Pradesh mein kai jagahon par Chin ne hamari sena ko patrolling karne se rok diya hai. Ye behad chinta janak hai.
1: Rahul ji ko history ke baare mein pura gyan nahi hai, kyunki Arunachal Pradesh, jiska naam Nefa tha, aapko malum hai, main aapko 2 minute time leta hu isko samjhane mein. Arunachal Pradesh mein jo Tawang sector hai, wo Bharat ka saath 1951 mein jude. 1951 se pehle wo tax dete the Tibet mein. 1959 में दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ के आए और चीन का प्रधानमंत्री चाओ इनलाई जब यहां आए तो उन्होंने बार बार कहा कि ये जो नेफा कहते हैं आप मैकमोहन लाइन से नीचे ये आपका हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, आप इसको रखिए. चाइना ने ही कहा, उस समय अरुणाचल का नाम नेफा थे, तो ये नेफा आपका है. उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया चीन ने अरुणाचल को. और बदले में यह कहा कि आप अक्सर चीन को क्लेम मत करो और हम नेफा को कुछ नहीं कहेंगे, मैकमोहन से आगे आपका ही है। जबकि 1914 में शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन को बाउंड्री बना दिया था, तो चाइना ने मान्यता दिया था उसको, उसमें साइन तो नहीं किया लेकिन बाद में कहा कि ठीक है नेफा आपका टेरिटरी। लेकिन बाद में जब इंडिया ने कहा कि नहीं हम अक्सर चीन नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके चीन ने फिर पहले तवांग को क्लेम किया, फिर अरुणाचल को क्लेम करने लगा। 1972 में नेफा से ये अरुणाचल नाम रखा, फिर 1987 में फुल फ्लेज स्टेट बना। तो अरुणाचल में जो जगह अभी एलिगेशन लगा रहे वो 1959 में असापिला रेंज में जो लोंगजू साइड में जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 में ऑक्यूपाई किया। 1962 में कोई एडिशनल बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, 1959 में ऑक्यूपाई किया, उसमें असम राइफल के हमारे कुछ जवान मारे गए। हमारे पास रास्ता नहीं था, कोई उसमें मेंटेनेंस करने का व्यवस्था भी नहीं था। बाद में असम राइफल के जगह में आईटीबीपी आए, इंडियन आर्मी तो है ही लेकिन फ्रंट में आईटीबीपी रहते हैं। 2013 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी साहब ने कबूल किया है कि अरुणाचल साइड में और चाइना का बॉर्डर एरिया में भारत का नीति ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमने ये माना कि वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। अब चीन के डर की क्या है वो पॉलिसी, बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगा। लेकिन जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 और 1962 में किया,
0: जगह नहीं गया।
1: नया जो बात कर रहे वो ऐसा है, क्योंकि हमारा रास्ता नहीं था, भारत सरकार ने ही रास्ता नहीं बनाने का पॉलिसी बनाया। तो वहां पे जो ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट है वहां पर चाइना ने पहले रास्ता बना लिया और उन्होंने पोस्ट बना लिया, और उसमें हमारे लोकल का कोई डिमार्केशन था नहीं, ग्रेजिंग करते थे हमारे जो एनिमल्स वगैरह, याक गाय वगैरह जो भी है वो ग्रेजिंग करने का, क्यों खाली मैदान है वहां, गांव तो होता नहीं है, गांव तो थोड़ा नीचे नीचे में है। तो जो अभी हमारा कुछ लोग अरुणाचल के कुछ लोकल लोग कह रहे हैं वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग पहले ग्रेजिंग करते थे वहां नहीं जा पा रहे, वहां चाइना ने इस्टैब्लिश किया है, पोस्ट बनाया। वो बात सही है लेकिन वो सारा एरिया इसलिए चाइना ने ऑक्यूपाई किया क्योंकि इंडिया ने तो रास्ता बनाया नहीं, इंडिया का कोई एक्टिविटी था नहीं। इंडियन गवर्नमेंट का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी काम जो है वो तो 2014-15 के बाद ही प्लानिंग करके अभी शुरू हो रहे हैं। ताक्सिंग जो जगह कह रहे हैं वो 2019 में ही रोड कनेक्ट हुआ, आप सोचो 1947 में आजादी प्राप्त हुआ और ताक्सिंग में रोड मोदी जी का समय में 2019 में कनेक्ट हुआ। ऐसे यहां गुंजी में भी देखिए 2019 में कनेक्ट हुआ। तो जब हमारा रास्ता ही नहीं था तो चाइना ने रास्ता बना लिया और उन्होंने कई जगह ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हमारा लोगों का जो कंसर्न है सही है। लेकिन ये जो आप गूगल मैप देख करके बात मत कीजिए, गूगल मैप में तो आगे को ऐसे येलो लाइन खींच देता है या व्हाइट लाइन खींचेगा और ये बॉर्डर रख करके दिखा देगा, वो तो मालूम नहीं है। और हमारे लोग भी कुछ लोग तो बेचारा नहीं जानते हैं, मैं तो ब्लेम नहीं करता हूं, उसको मालूम नहीं, वो गूगल मैप देखते हैं और कहते हैं ओह ये तो इंडियन टेरिटरी। अरे वो जो जगह जहां चाइना लोगों ने घर बनाया, जो गांव बसाया, बिल्डिंग बनाया, वो 1959 में ऑर्डर ले चुके हैं।
0: थैंक यू।
1: लेकिन हम एक इंच नया जमीन तो नहीं देने के लिए हम लोग पूरा हमारा फोर्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। हम लोग तो लेट से शुरू किया ना, चाइना तो पहले कर लिया।
0: All right, Kiran Rijuju, pleasure speaking to you and thank you for taking all the questions.
1: Thank you.
2: You are watching India Today.

0: इफ यू टेक ह्यूमैनिटीज आप जॉबलेस रह जाओगे और अगर पढ़ाना है तो फिर जॉब करना है. आई हैव सीन ऑल दिस सर.
1: ओके, यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयरफॉर बिकॉज़ वन ऑफ माय क्वेश्चंस इज इफ देयर इज वन थिंग यू विश टू चेंज अबाउट इंडिया एज वी एंटर द 80th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, व्हाट वुड दैट बी? व्हाट इज द वन थिंग यू वांट टू सी चेंज?
2: द डॉग्मा ऑफ रिलीजन.
1: यू वांट रिलीजन टू बी आउट ऑफ पब्लिक लाइफ. कि अगर तो व्हाट एवर रिलीजन यू आर डू इट एट होम नॉट इन पब्लिक. एम आई व्हाट डू मीन बाय डॉग्मा ऑफ रिलीजन?
2: डॉग्मा ऑफ रिलीजन लाइक आई वुड लाइक टू लाइक कोट दिस एग्जांपल. अगर जो हम अपनी शादियों में देखें या फिर घर पे भी देखें, व्हेन वी पुट अ पॉट लाइक अगर जो अर्थन पॉट रख रहे हैं, कलश रख रहे हैं, कलश को घर पे स्थापित कर रहे हैं, तो उसके नीचे हम अनाज रखते हैं, गेहूं, चावल, वट एवर इट इज. अब पहले के जो मकान थे, पहले के जो घर होते थे, वो मिट्टी के होते थे. मिट्टी के ऊपर अनाज रखा, अनाज के ऊपर आपने अपना कलश रखा, एंड वो अनाज जो है मिट्टी के साथ चला जा रहा है. नाउ द होम्स आर बिल्ट लाइक ऑफ कॉन्क्रीट, टाइल्स लगे हैं, टाइल्स के ऊपर भी हम अनाज रख रहे हैं, फिर उसके ऊपर कलश रख रहे हैं, और अगले दिन हम झाड़ू से उसे किनारे कर दे रहे हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट फॉलोइंग द रिलीजन विदाउट एनी सेंस. दैट्स अ डॉग्मा. वी आर नॉट क्वेश्चनिंग व्हाई इट वाज देयर, एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट. दैट्स अ डॉग्मा, दैट्स जस्ट एन एग्जांपल. बट देयर आर लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे.
1: डू यू थिंक वी शुड हैव लेस रिलीजन इन पब्लिक लाइफ इन जनरल?
3: एब्सोल्यूटली.
1: यू डू थिंक दैट देयर शुड? आई मीन इफ आई वर टू आस्क यू,
4: Especially in politics,
1: if you ever to ask you, would you like a school built or a temple built, or a church or a mosque or a church? What do you think should be built?
4: A school.
2: Who is building?
1: No, I'm saying suppose a politician says he comes for an election campaign and says, if you elect me, I'm going to build a bhavya mandir or a large mosque or a church there. Versus him saying, I'm going to build a school for all of you or a hospital. What will you choose? Honest answer.
2: The first will win.
1: The first, those who say that I'll build a temple, mosque, and church will win.
2: Yes.
1: Not
2: yes.
1: those who say they'll build a school or a hospital.
2: Yes.
4: But sir,
2: that's the reality of society.
4: कुछ लोगों के श्रद्धा भी तो है ना, श्रद्धा की भी तो वैल्यू की जा रही है मंदिर बनाने.
1: Faith.
4: Yes. अगर स्कूल भी बन रहे हैं.
3: एग्जाम्पल राम मंदिर का है सर, उधर पे भी सर लाखों लोगों की श्रद्धा है और फेथ जुड़ी हुई थी उसके साथ.
1: चंदा चोरी इज अ फेलियर ऑफ द सिस्टम. आई मीन डू फील वन थिंग वी नीड टू चेंज इन आवर सोसाइटी इज टू होल्ड समबडी अकाउंटेबल. Paper leaks take place year after year. Vacancies don't get filled. There's chanda chori. I mean, I'm just wondering, what is it that you want changed? Do you want less corruption? Do you want the entire system changed? What do you want? Yes, Madhav.
5: Representation.
1: What do you mean by that?
5: The first thing is that we have been, as Gen Z, we are fed up of representation. Now we need agency. It is not about the kind of revolution we witnessed in like Arab Spring, not the revolution of Nepal or Bangladesh for that matter. We still believe in the institutions, but what we demand is a stakeholding. Since we are not passive receivers, we are active participants of the system. We should be consulted, our voices should be heard. And as Howard Cable also said, that every person has the capacity to resist. And that resistance is the path where we demand our accountability, our agency. And the recent protest of Jantar Mantar, the 20th July protest, it gave me so much hope, because this is...
1: How many of you supported? Because, complete. Because why? Why did it give you hope?
5: Because this was the first time I could resonate myself as a Gen Z.
2: And that
1: you wanted people, you resonated with what the Cockroach Janata Party did.
5: Absolutely.
1: You see yourself as a cockroach? In a way that, you do.
5: Yeah, why not? Because the anger against the system is real. You have to listen to somebody.
1: Is the anger against what? What is the anger against? Against corruption? Against paper leak? What is the anger against?
5: Everything. The corruption is rampant. Accountability is zero. If you say that it is a government of the people, by the people, for the people, you have to listen to the people. You have to listen to their anguish. And if you're not doing that, then what is the entire point of running the government?
1: How many of you agree with what happened at Jantar Mantar? Or think that they, how many of you feel that you need a Cockroach Janata Party? How many of you say no?
4: Sir, we need a new party.
1: You need a new party in this country?
4: Yes, sir. मतलब जो कि nationalist party हो और Gen Z की बात करें. But अगर आप Cockroach Janata Party की बात करें, जैसे सर हम जम्मू कश्मीर से हैं, वहाँ के स्टेज से ये नारे लग रहे हैं कि कश्मीर was never been an integral part of India. तो ये चीज को कैसे justify करोगे कि आप सही हुए?
2: Wait, sir, that's a misconception. The nara was not from there. The video that you have shown on Instagram was from 2012.
4: अरे यार वो

0: even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
1: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है. ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए. हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं.
0: कांग्रेस इनिशियली क्लेम्ड दैट सोनिया वाज नॉट स्टॉपिंग द नेशनल सॉन्ग बट वाज सीकिंग अ चेयर फॉर पार्टी चीफ, बट लेटर एडमिटेड दैट सोनिया वांटेड वंदे मातरम टू स्टॉप.
2: पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई. यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे. सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो.
3: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया.
0: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
4: Mere pyare deshvasiyon,
0: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है. आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है.
0: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
5: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला? वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में, आप उसको कैसे देखते हैं?
6: एक्चुअली देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया. नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया. सोनिया जी ने वही किया. हम इसका जो क्या बोले उसको, हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है. एकदम घृणोने आदमी है ये. वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया. जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयवाद के खिलाफ काम करता है. ये हम मान नहीं सकते हैं.
5: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे. वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो उनके बगल में खड़े थे, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे. क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्र गीत के बीच में तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
6: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है ये सहमत नहीं है. इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं. सोनिया जी जब मुंह घुमा के इधर उधर देख रहे थे वो शायद बगल में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो मैनेज कर लो। उसके बगल में तो राजीव आपका
5: राहुल गांधी
6: जी भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था, उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है। अरे भाई तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना दिन तक। ठीक है अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
5: जी।
6: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
5: कल,
6: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
5: आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
6: देखिए सबसे बड़ा बात ये पूरा गलत गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए थे इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय ये दो बंदा इंडिया का दो बंदा उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाह किसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोष है जिन्ना साहब जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति, ये जो बात है ये वो लोग महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
5: जी।
6: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
5: मिस्टर चट्टोपाध्याय आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
6: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
5: जी, जी आपका बड़ा भाई जो है उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए उन्होंने, पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे। इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है, या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे, कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
6: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसका अपोलो तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है गलती।
5: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
6: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
5: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
6: 100% कहा है को, ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया। वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया, इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन, किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। कुछ कर पाए ना पाए, हम इसमें सहमत नहीं है।
5: एक एक आखिर

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: श्रीमती सोनिया गांधी, देयर सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड सिटिंग प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, व्हाइल इट वाज बीइंग संग दे वर नॉट अटेंटिव, रादर देन दे वर कैजुअली टॉकिंग टू ईच अदर, गिविंग रिमार्क्स टू ईच अदर, इवन कॉलिंग समवन, दिस शोज द अटर डिसरिस्पेक्ट बाई कांग्रेस पार्टी towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: He later revealed the performance was completely impromptu, calling it the joy of music despite being in pain. A recent Usher concert in New Delhi sparked bizarre online speculation about some fans claimed the singer did not look like himself. Some even suggested he could be a clone, though there is no evidence supporting the claim. A Japanese woman traveled thousands of kilometers to Uttarakhand to fulfill a promise to her late husband. Miyako Ketlet carried his ashes to Bageshwar and performed his final rituals before immersing them in the Sariu River.
1: Hello everyone, mera naam Shilpi Jain hai. Aur jaisa ki abhi tak aap logon ne news mein dekh hi liya hoga, jo flight Phuket se Delhi aa rahi thi.
0: A passenger on Air India flight from Phuket to Delhi described the terrifying turbulence encounter.
1: ये आप देख सकते हैं मेरा बोर्डिंग पास मेरी सीट थी 23F.
0: Claiming the aircraft suddenly dropped around 300 feet. She called the experience a near-death experience after flight AI-2379 encountered severe turbulence.
1: उनको इंजरी आई है. कुछ लोग जो मेरे आसपास थे, इनफैक्ट वो लोग काफी ज्यादा पीछे की साइड, कोई इधर की साइड और काफी अलग अलग तरीके की लोगों को इंजरी आई है. और जब ये इंसिडेंट हुआ, क्रू मेंबर काफी अच्छा था, काफी अच्छे से सपोर्ट करा, दैट आई अप्रिशिएट. बट उन लोगों ने एक चीज बोली कि आप लोग कहीं भी वीडियो बना के इस इंसिडेंट को मत डालना, क्योंकि इससे हमारी रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगा, इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी, जो कि मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगा.

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें पर इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्य दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Welcome back, viewers. We're beginning the segment with breaking news coming in. This is from down south, specifically from the state of Tamil Nadu, where Chief Minister Vijay has now come out to react to the Karnataka killings. He said, and I quote, "It is heartbreaking that Anthony Sami, John Rose, Peter and Kumar, who were Tamils residing in villages in the Hunsur Taluk of Chamarajnagar district in Karnataka, were shot dead by the Karnataka Forest Department officials in the early hours of August 15, 2026 in the Kaveri Wildlife Sanctuary area. I strongly condemn this massacre. The explanation given by the Karnataka Forest Department regarding this incident is indeed unacceptable. An honest investigation must be conducted in connection with this brutal incident. A high-level investigation committee should be formed and appropriate punishment should be meted out to those responsible." Now, this is just an excerpt of what he said. Meanwhile, Apurva joins me on the broadcast with more details on this. Apurva, you know, earlier we were talking about how there is now Stalin and the DMK raising questions about why the chief minister hasn't yet spoken about the killings. We do see now he has. He's condemned the action as well as come out to say that the Karnataka government must provide all necessary assistance to the families, as well as an investigation should be thoroughly provided.
2: Well, that's right, Shreya. In fact, if you do see, just a short while back, we saw the former Tamil Nadu chief minister and DMK chief M.K. Stalin going ahead and questioning the inhumane killings of the Tamils there as well. And right now you see the Tamil Nadu chief minister Vijay, who has gone ahead and also condemned this killing that had taken place. In fact, it's not just the way in which these three Tamils were killed, but also the chief minister and the TVK government has gone ahead and condemned the way the TVK, Congress government in Karnataka has handled the thing, especially the forest officials not being taken to task. And in fact, it's the same question that opposition as well as leaders across Tamil Nadu, including the ruling government, are questioning, which is that why is it that this incident that has shocked the state of Tamil Nadu been brushed away under the rug, and why is it the perpetrators, the forest officials who ought to be held liable, why aren't they being treated the same with the merit and a murder case that has been charged against them? In fact, Tamil Nadu has also gone ahead and stated and reiterated that a high level investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
1: Absolutely, Apurva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted with the National Testing Agency, having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
3: This is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the NTA's another controversy is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and re-examination will take place in the month of September, and that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students University of India Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NT office in the morning and the evening as well. And we will be also seeing
1: right.
3: that politics right. on the chair.
1: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
4: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
5: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naxalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
6: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism चिदंबरम साहब Home Minister थे. सबसे ज्यादा अगर फायदा तो इनके as a Home Minister वो फायदा है. और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
5: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier Urban Naxal jibe.
7: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है. क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
8: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
5: India has signaled a big win in its bid to eradicate the red terror, the rambok of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
1: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre for fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
5: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
9: 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
10: अरे क्षमा चाहिए नहीं भूल हो स्वीकार करो मैंने ये आशा करो ये हाई अप्रीचमेंट का पॉलिटिक्स है जो 15 साल ममता बनर्जी ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
5: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
11: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है ये देश के लिए अपमान है ये पूरा भारत के लिए अपमान है बंगाली जाति का अपमान है और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं
5: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief but later admitted that Sonia wanted Bande Mataram to stop.
12: पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
13: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
5: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
14: Mere pyare deshvasiyon,
5: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
14: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
5: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
1: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojol Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojol Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में आप उसको कैसे देखते हैं
15: एक्चुअली देखिए सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया सोनिया जी ने वही किया हम इसका जो क्या बोले उसको हम एकदम सनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है, एकदम घृणोने आदमी है ये। वो खाली बंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो बंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयवाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
1: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो जो उनके बगल में खड़े थे उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते या सहमत है, क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्रगीत के बीच में तो ठीक है, जाने दे सकते हैं, क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
15: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के दादा देख रहे थे, वो शायद बगले में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगले में तो राजीव आपका
1: राहुल गांधी
15: भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था, उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है। अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम का यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
1: जी।
15: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
1: कल,
15: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
1: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग, क्या आप इस चीज को मानते हैं?
15: देखिए, सबसे बड़ा बात, ये पूरा गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय ये दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था, जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाहा कि इसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोष है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है, देखिए वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुमी मा शक्ति, हृदय तुमी मा भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिला माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? उन लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
1: जी।
15: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
1: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
15: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
1: जी, आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलॉजी, एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी उनके तरफ से आए, उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपोलॉजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपोलॉजी आ गई तो आप लोग अपोलॉजी को मान लेंगे कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
15: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं तो उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसका वो तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है गलती।
1: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
15: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
1: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
15: 100% को ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया। वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। कुछ कर पाए ना पाए इसमें सहमत नहीं है।
1: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
15: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलॉजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलॉजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलॉजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
1: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स, ही हैज डिमांडेड एन अपोलॉजी, एन अनकंडीशनल अपोलॉजी, एंड नॉट एन अपोलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
16: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies and things are, inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. will take strict actions, because our department, when it's such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
1: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Riya Kundu. Stay tuned.
0: You are watching India Today.

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: श्रीमती सोनिया गांधी, देयर सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड सिटिंग प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, व्हाइल इट वाज बीइंग संग दे वर नॉट अटेंटिव, रादर देन दे वर कैजुअली टॉकिंग टू ईच अदर, गिविंग रिमार्क्स टू ईच अदर, इवन कॉलिंग समवन, दिस शोज द अटर डिसरिस्पेक्ट बाय कांग्रेस पार्टी towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram.
2: आज के सरकार ने कोई right to किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
1: Absolutely, Apoorva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted with the National Testing Agency, having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
2: This is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the NTA's another controversy is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Around majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and the examination will take place in the month of September, and that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NTA office in the morning and the evening as well. And we will be also seeing that politics creeping on this issue.
1: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
3: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
4: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naxalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
5: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism चिदंबरम साहब होम मिनिस्टर थे. सबसे ज्यादा अगर फैला तो इनके as a home minister वो फैला है, और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
4: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier Abu Naxal jibe.
6: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है, और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
7: It shows the depth to which RSS and BJP leaders are willing to degenerate. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
4: India has signaled a big win in its bid to eradicate the red terror. The ramp walk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
1: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre of a fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
4: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
8: 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
9: তারা ক্ষমা চেয়ে নিন ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন এটাই আশা করব ये हाई अप्रिजमेंट का पॉलिटिक्स है जो 15 साल মমতা ব্যানার্জি ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
4: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
10: Sonia Gandhi ने जो हरकत की है, वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं।
4: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief but later admitted that Sonia wanted Vande Mataram to stop.
11: पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
12: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
4: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी।
3: मेरे प्यारे देशवासियों,
4: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
3: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
4: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
1: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला। वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में, आप उसको कैसे देखते हैं?
13: एक्चुअली देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया। नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया। सोनिया जी ने वही किया। हम इसका जो क्या बोले उसको, हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है। एकदम घृणोने आदमी है ये। वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
1: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो जो उनके बगल में खड़े थे उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्र गीत के बीच में तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
13: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है ये, सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के ज्यादा देख रहे थे, वो शायद बगले में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगले में तो राजीव आपका
1: राहुल गांधी
13: भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था ये, तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था। उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
1: जी।
13: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने।
1: कल
13: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
1: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
13: देखिए, सबसे बड़ा बात ये पूरा गलत एनालिसिस है। ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने पूरा गलत एनालिसिस है। ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने का कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय ये दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है। उन्होंने भी चाहा कि इसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोष है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है, देखिए वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग। ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुमी मा शक्ति, हृदय तुमी मा भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिला माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? उन लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
1: जी।
13: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
1: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
13: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
1: जी, जी आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे। इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है, या फिर कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे, कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
13: देखिए, सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है? वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं उसके एपोलॉजी का क्या बात है? उसका अपोलो तो जानबूझ के किया, जो कि तो बच्चा तो नहीं है गलती।
1: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए। आप उससे सहमत नहीं है? आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
13: देखिए, हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
1: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है? आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं
13: 100%? काय को, ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया। वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है, इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन, किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। हम कुछ कर पाए ना पाए, हम इसमें सहमत नहीं है।
1: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार के तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
13: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलोजी उसको चाहना है दोनों को, तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया, अपोलोजी हो गया, वो बात नहीं है। पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है
1: जी। जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए. व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से. ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स. ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
14: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies, and things are, this inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions. Because our department, when it's such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
1: Bollywood stars Ajay Devgan, Shah Rukh Khan and Tiger Shroff have received notices from the Maharashtra FDA over a Vimal Elaichi advertisement. The food regulator suspects the ad could amount to surrogate advertising for Vimal Pan Masala, which is prohibited in Maharashtra. FDA has given 15 days to the actors to explain their roles as brand endorsers. The FDA has in fact warned that legal action could follow if the advertisement is found to be misleading. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Riya Kundu. Stay tuned.
15: You are watching India Today.

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें उसका। इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्या हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: are watching India Today.
1: Welcome back, viewers. We're beginning the segment with breaking news coming in. This is from down south, specifically from the state of Tamil Nadu, where Chief Minister Vijay has now come out to react to the Karnataka killings. He said, and I quote, "It is heartbreaking that Anthony Sami, John Rose, Peter and Kumar, who were Tamils residing in villages in the Hunsur Taluk of Chamarajnagar district in Karnataka, were shot dead by the Karnataka Forest Department officials in the early hours of August 15, 2026 in the Kaveri Wildlife Sanctuary area. I strongly condemn this massacre. The explanation given by the Karnataka Forest Department regarding this incident is indeed unacceptable. An honest investigation must be conducted in connection with this brutal incident. A high-level investigation committee should be formed and appropriate punishment should be meted out to those responsible." Now, this is just an excerpt of what he said. Meanwhile, Apurva joins me on the broadcast with more details on this. Apurva, you know, earlier we were talking about how there is now Stalin and the DMK raising questions about why the chief minister hasn't yet spoken about the killings. We do see now he has. He's condemned the action as well as come out to say that the Karnataka government must provide all necessary assistance to the families, as well as an investigation should be thoroughly provided.
2: Well, that's right, Shreya. In fact, if you do see, just a short while back, we saw the former Tamil Nadu Chief Minister and DMK Chief M.K. Stalin going ahead and questioning the inhumane killings of the Tamils there as well. And right now you see the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, who has gone ahead and also condemned this killing that had taken place. In fact, it's not just the way in which these three Tamils were killed, but also the Chief Minister and the TVK government has gone ahead and condemned the way the TVK, Congress government in Karnataka has handled the thing, especially the forest officials not being taken to task. And in fact, it's the same question that opposition as well as leaders across Tamil Nadu, including the ruling government, are questioning, which is that why is it that this incident that has shocked the state of Tamil Nadu been brushed away under the rug, and why is it the perpetrators, the forest officials who ought to be held liable, why aren't they being treated the same with the merit and a murder case that has been charged against them? In fact, Tamil Nadu has also gone ahead and stated and reiterated that a high-level investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
1: Absolutely, Apurva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted, with the National Testing Agency having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
3: This is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contentious point between the BJP and the Congress government. And now the NTA is another controversy, is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and re-examination will take place in the month of September. And that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NT office in the morning and the evening as well. And we will be also seeing
1: right.
3: that politics continuing
1: right.
3: on the city chair.
1: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Arban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
4: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
5: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a dimagi naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed naksalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
6: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism Chidambaram साहब Home Minister थे. सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा तो इनके as a Home Minister वो फ़ायदा है. और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
5: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
7: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है. क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
8: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
5: India has signaled a big win in its bid to eradicate the red terror, the ramwalk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
1: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre for fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
5: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song.
9: We are not singing one.
5: Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
9: 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
10: अरे क्षमा चाहिए नहीं भूल हो स्वीकार कर आशा कर ये हाई अप्रिजमेंट का पॉलिटिक्स है जो 15 साल ममता बनर्जी ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
5: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
11: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है ये देश के लिए अपमान है ये पूरा भारत के लिए अपमान है बंगाली जाति का अपमान है और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं
5: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief but later admitted that Sonia wanted Bande Mataram to stop.
12: पूरा वचन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
13: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
5: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
14: Mere pyare deshvasiyon,
5: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
14: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
5: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
1: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में आप उसको कैसे देखते हैं
15: एक्चुअली देखिए सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया सोनिया जी ने वही किया हम इसका जो क्या बोले उसको हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है एकदम घृणोने आदमी है ये। वो खाली बंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो बंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोचिए कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयवाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
1: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो उनके बगल में खड़े थे, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्रगीत के बीच में, तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
15: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है, ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के दादा देख रहे थे, वो शायद बगले में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगले में तो राजीव आपका
1: राहुल गांधी
15: जी भी कर रहे थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था। उसका मुंह में एक तो क्या बोलते, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
1: जी।
15: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने।
1: कल
15: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
1: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
15: देखिए, सबसे बड़ा बात, ये पूरा गलत एनालिसिस है। ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है। ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय ये दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाहा कि इसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोस्त है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली वो क्या करता है, देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
1: जी।
15: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
1: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से, जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
15: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
1: जी, आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए, उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपोलॉजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे. इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है. आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपोलॉजी आ गई तो आप लोग अपोलॉजी को मान लेंगे कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
15: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे. एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं तो उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसका वो तो जानबूझ के किया जो किया, तो बच्चा तो नहीं है तो गलती.
1: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए. आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
15: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है.
1: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
15: 100% खाए को ये देश का सर झुक गया. वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं. जो बिल एक बार पास हो गया इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है. कुछ कर पाए ना पाए हम इसमें सहमत नहीं है.
1: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
15: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलॉजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा. वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलॉजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है. दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलॉजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है. कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है. हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है.
1: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए. व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से. ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स. ही हैज डिमांडेड एन अपोलॉजी, एन अनकंडीशनल अपोलॉजी, एंड नॉट एन अपोलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
16: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies and things are, inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. will take strict actions, because our department, when such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
1: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Riya Kundu. Stay tuned.
0: You are watching India Today.

0: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। अब पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
1: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
2: वंदे मातरम का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को आप जबरन बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते, मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 25 से 28 मुझे इजाजत देता है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। तो वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं है, शिर्क में आ जाता है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं।
3: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। ये उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है।

0: अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: मेक योर मीडिया प्लान स्मार्टर विद इंडिया टुडे लाइव टीवी ऑन योर कनेक्टेड डिवाइसेस। Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: officials who are to be ought to be held liable, why aren't they being treated the same with the merit and a murder case that has been charged against them? In fact, Vijay has also gone ahead and stated and rather reiterated that a high level investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
1: Absolutely, Apurva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted with the National Testing Agency, having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English. Commerce, sociology, after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
2: This is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the NTA is another controversy is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Around majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and re-examination will take place in the month of September, and that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NTA office in the morning and the evening as well. And we will be also seeing
1: right.
2: The politics right. On this issue.
1: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
3: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
4: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naxalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
5: Takriban 12 states thi, jisme Naxalism Chidambaram sahab home minister the. Sabse jyada agar faida to inke as a home minister wo faida hai. Aur ye to aansu bahate hain unke khate. Inke andar bahut bada dard hai.
4: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
6: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है, और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
7: It shows the depth to which RSS and BJP leaders are willing to degenerate. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
4: India has signalled a big win in its bid to eradicate the Red Terror, the ram walk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
1: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre of a fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
4: For the first time, the full six stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
8: 80 saal ke baad Bankim Babu ka ye amar mantra amar gaan jab phir se सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
9: তারা ক্ষমা চেয়ে নিন ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন এটাই আশা করব এই হাই অ্যাপিজমেন্ট কা পলিটিক্স है जो 15 साल মমতা ব্যানার্জি ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
4: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
10: Sonia Gandhi ne jo harkat ki hai, wo bahut sharmnak hai. Ye desh ke liye apaman hai. Ye pura Bharat ke liye apaman hai. Bengali jati ka apaman hai. Aur mera parivar ko to baat chhodiye. Hum log to bahut hi byathit hue hain.
4: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief but later admitted that Sonia wanted Vande Mataram to stop.
11: Pura version gaya gaya kyunki sansad mein is par charcha hui. Yahan koi rokne ka prayas nahi tha kyunki lambe samay se Congress adhyaksh khade hue the. Sonia ji keh rahi thi unke liye kursi laake rakh do.
12: Ye BJP wale keh rahe hain ki apmaan hum logon ne kiya hai Vande Mataram ka to aap bata dijiye कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया।
4: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
3: मेरे प्यारे देशवासियों,
4: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
3: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
4: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
1: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला? वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में, आप उसको कैसे देखते हैं?
13: एक्चुअली देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो किया, ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया। नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया, सोनिया जी ने वही किया। हम इसका जो क्या बोले उसको, हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है, एकदम घृणोने आदमी है ये। वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
1: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो उनके बगल में खड़े थे, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्र गीत के बीच में, तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
13: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के ज्यादा देख रहे थे, वो शायद बगले में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगले में तो राजीव आपका
1: राहुल गांधी
13: भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था। उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
1: जी।
13: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने।
1: कल
13: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
1: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी
13: 100%
1: कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने क्योंकि नेहरू की बात की तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग, क्या आप इस चीज को मानते हैं?
13: देखिए सबसे बड़ा बात ये पूरा गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए इन लोगों ने पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है इसका। जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो मछालन ने खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाह किसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोस्त है जिन्ना साहब जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुमी मा शक्ति हृदय तुमी मा भक्ति, ये जो बात है ये वो लोग महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
1: जी।
13: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
1: मिस्टर चट्टोपाध्याय आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
13: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
1: जी, आपका बड़ा भाई जो है उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
13: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे, एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसके अपो तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है तो गलती।
1: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
13: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
1: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
13: 100% काय को ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया, वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। हम कुछ कर पाए ना पाए हम इसमें सहमत नहीं है।
1: एक एक आखिरी आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
13: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूं, अगर एपोलॉजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया एपोलॉजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है दूसरा बात यह, अगर वो एपोलॉजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
1: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स। ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi has hit out at the government yet again over the Jantar Mantar protests. Rahul has praised the courage of India's youth, saying young protesters stood firm while demanding accountability from the Prime Minister. Rahul also said that the youngsters raised their voices through peace, love and humour. In a social media post accompanying a video of his interaction with the students, Rahul lauded girls who participated in the protests, alleging that they faced misconduct, verbal abuse and violence and were forced to apologise to the Prime Minister. He's also announced that the next edition of Chhatro Ki Goonj, scheduled in Pune on August 22nd, will focus exclusively on girls and give young women a platform to speak.
14: Three girls have been forced to do maafi.
15: Yeah.
14: And then the Prime Minister has accepted this maafi. Aap log protest kar rahe ho. Aapko dhamka kar maafi karwa rahe hain. And then PM is saying thank you for the maafi. Who is he to be thanking for the maafi? This apology is being given to you and then you're accepting the apology.
1: Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
16: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies and things are, inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions. Because our department, when such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
1: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Sriya Kundu. Stay tuned.
17: You are watching India Today.

0: The Congress has no respect for the national songs, national symbols and national ethos. Vande Mataram, it is now everywhere, it has been decided to sing the full stanzas, the full length Vande Mataram. But Sonia Gandhi doesn't realize this, and she, now they are trying to make some lame excuse on that. But definitely her behavior with regard to the behavior, her behavior during the rendition of Vande Mataram is highly objectionable, and Bharatiya Janata Party condemns it.
1: Congress party ke mukhyalay par Vande Mataram ka gaan ho raha tha. Chalu gaan mein Congress ki netri Sonia ji ne Congress adhyaksh ko rokna gaan rokne ka kaha. Hum sab TV par dekhte rahenge. 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है. सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है. आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी. कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए. कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.
2: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है. ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए. हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से. और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं. मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को. देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं.
3: तार परिवार गतकाल रात ही रिएक्ट करे सर, मेल करे माननीय सोनिया गांधी के, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के जानिए सर. তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করব. এই হাই অ্যাপ্রিজমেন্ট কা পলিটিক্স হে, জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হে, ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হে. এক খাস ভোট ব্যাংক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হে.
4: ইউ আর ওয়াচিং ইন্ডিয়া টুডে.

0: Welcome back, viewers. We're beginning the segment with breaking news coming in. This is from down south, specifically from the state of Tamil Nadu, where Chief Minister Vijay has now come out to react to the Karnataka killings. He said, and I quote, "It is heartbreaking that Anthony Sami, John Rose, Peter and Kumar, who were Tamils residing in villages in the Hunsur Taluk of Chamarajnagar district in Karnataka, were shot dead by the Karnataka Forest Department officials in the early hours of August 15, 2026 in the Kaveri Wildlife Sanctuary area. I strongly condemn this massacre. The explanation given by the Karnataka Forest Department regarding this incident is indeed unacceptable. An honest investigation must be conducted in connection with this brutal incident. A high-level investigation committee should be formed and appropriate punishment should be meted out to those responsible." Now, this is just an excerpt of what he said. Meanwhile, Apoorva joins me on the broadcast with more details on this. Apoorva, you know, earlier we were talking about how there is now Stalin and the DMK raising questions about why the chief minister hasn't yet spoken about the killings. We do see now he has. He's condemned the action as well as come out to say that the Karnataka government must provide all necessary assistance to the families, as well as an investigation should be thoroughly provided.
1: Well, that's right, Shreya. In fact, if you do see, just a short while back, we saw the former Tamil Nadu chief minister and DMK chief M.K. Stalin going ahead and questioning the inhumane killings of the Tamils there as well. And right now you see the Tamil Nadu chief minister Vijay, who has gone ahead and also condemned this killing that had taken place. In fact, it's not just the way in which these three Tamils were killed, but also the chief minister and the TVK government has gone ahead and condemned the way the TVK, Congress government in Karnataka has handled the thing, especially the forest officials not being taken to task. And in fact, it's the same question that opposition as well as leaders across Tamil Nadu, including the ruling government, are questioning, which is that why is it that this incident that has shocked the state of Tamil Nadu been brushed away under the rug, and why is it the perpetrators, the forest officials who ought to be held liable, why aren't they being treated the same with the merit and a murder case that has been charged against them? In fact, Tamil Nadu has also gone ahead and stated reiterated that a high level investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
0: Absolutely, Apoorva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted, with the National Testing Agency having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology, after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
2: Sir, this is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the NTA is another controversy, is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Around majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and the examination will take place in the month of September, and that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NTA office in the morning and the evening. as well, and we will be also seeing
0: right.
2: the politics right. on the chair.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal row has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
3: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
4: The war of words over Prime Minister Modi's Dimagi Naxal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naxal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naxalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
5: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism Chidambaram साहब Home Minister थे. सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा तो इनके as a Home Minister वो फ़ायदा है. और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
4: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
6: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है. क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
7: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationalists.
4: India has signaled a big win in its bid to eradicate the red terror, the ramwalk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
0: A political row has erupted over the national song Bande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre for fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Bande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
4: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song.
8: Not
4: Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
8: 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
9: তারা ক্ষমা চেয়ে নিন ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন এটাই আশা করি ये हाई অ্যাপ্রিজমেন্ট का पॉलिटिक्स है जो 15 साल মমতা ব্যানার্জি ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
4: इवन द डिसेंडेंट्स ऑफ चैटर्जी क्लेम दैट दे हैव बीन डीपली हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ सोनिया गांधी
10: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है ये देश के लिए अपमान है ये पूरा भारत के लिए अपमान है बंगाली जाति का अपमान है और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं
4: कांग्रेस इनिशियली क्लेम्ड दैट सोनिया वाज नॉट स्टॉपिंग द नेशनल सॉन्ग बट वाज सीकिंग अ चेयर फॉर पार्टी चीफ बट लेटर एडमिटेड दैट सोनिया वांटेड वंदे मातरम टू स्टॉप
11: पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
12: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
4: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
13: Mere pyare deshvasiyon,
4: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
13: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
4: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
0: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में आप उसको कैसे देखते हैं
14: एक्चुअली देखिए सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया सोनिया जी ने वही किया हम इसका जो क्या बोले उसको हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है एकदम घृणोने आदमी है ये वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया पूरा देश का अपमान किया देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोचिए कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
0: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो उनके बगल में खड़े थे, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्रगीत के बीच में, तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
14: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है, ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के ज्यादा देख रहे थे, वो शायद बगल में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगले में तो राजीव, आपका
0: राहुल गांधी
14: जी भी कह रहे थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था, उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
0: जी।
14: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
0: कल।
14: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
0: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
14: देखिए, सबसे बड़ा बात, ये पूरा गलत गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाह किसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोष है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है, देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदय तुम्ही मा भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिला माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
0: जी।
14: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
0: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से, जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
14: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
0: जी, जी आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए उन्होंने, पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे। इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है, आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत हैं कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
14: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसका अपोल तो जानबूझ के किया जो किया, तो बच्चा तो नहीं है तो गलती।
0: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
14: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
0: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
14: 100% काय को, ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया, वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। कुछ कर पाए ना पाए हम इसमें सहमत नहीं है।
0: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
14: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलोजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलोजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
0: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स, ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
15: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies and things are, with inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions. Because our department, when it's such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
0: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Priya Kundu. Stay tuned.
16: You are watching India Today.

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: श्रीमती सोनिया गांधी, देयर सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड सिटिंग प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, व्हाइल इट वाज बीइंग संग दे वर नॉट अटेंटिव, रादर देन दे वर कैजुअली टॉकिंग टू ईच अदर, गिविंग रिमार्क्स टू ईच अदर, इवन कॉलिंग समवन, दिस शोज द अटर डिसरिस्पेक्ट बाय कांग्रेस पार्टी towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete

आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।

0: asked us, you know, about the way in which these three Tamils were killed, but also the Chief Minister and the TVK government has gone ahead and condemned the way the TVK, Congress government in Karnataka has handled the thing, especially the forest officials not being taken to task. And in fact, it's the same question that opposition as well as leaders across Tamil Nadu, including the ruling government, are questioning, which is that why is it that this incident that has shocked the state of Tamil Nadu been brushed away under the rug, and why is it the perpetrators, the forest officials who ought to be held liable, why aren't they being treated the same with the merit and a murder case that has been charged against them? In fact, Tamil Nadu chair has also gone ahead and stated and reiterated that a high level investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
1: Absolutely, Apoorva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted, with the National Testing Agency having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology, after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
2: This is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Majority of the questions from the English the paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and the examination will take place in the month of September, and that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NTA office in the morning and the evening as well. And we will be also seeing that politics is creeping on this issue.
1: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang, used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
3: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
4: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naxalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
5: तकरीबन 12 states थी जिसमें Naxalism
6: चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा अगर फायदा तो इनके एज ए होम मिनिस्टर वो फायदा है, और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते, इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है कि वो नेशनलिज्म खत्म कैसे हो गया।
4: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
7: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
8: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट। Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
4: India has signaled a big win in its bid to eradicate the Red Terror, the rampwalk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
1: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre of a fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
4: For the first time, the full six stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
9: 80 saal ke baad Bankim Babu ka ye amar mantra amar gaan jab phir se सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
10: अरे क्षमा चेये नीन भूल होयेछे स्वीकार करबेन एटाई आशा कर। ये हाई अपीजमेंट का पॉलिटिक्स है जो 15 साल ममता बनर्जी ने किया है, वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है। एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है।
4: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
11: Sonia Gandhi ne jo harkat ki hai wo bahut sharmnak hai. Ye desh ke liye apman hai. Ye pura Bharat ke liye apman hai. Bengali jati ka apman hai. Aur mera parivar ko to baat chhodiye. Hum log to bahut hi byathit hue hain.
4: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief, but later admitted that Sonia wanted Vande Mataram to stop.
12: पूरा वचन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
13: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया।
4: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
14: Mere pyare deshvasiyon,
4: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
14: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
4: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
1: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला? वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में, आप उसको कैसे देखते हैं?
15: एक्चुअली देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया। नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया। सोनिया जी ने वही किया। हम इसका जो क्या बोले उसको, हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है। एकदम घृणोने आदमी है ये। वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
1: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो जो उनके बगल में खड़े थे उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्र गीत के बीच में तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
15: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है ये, सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के ज्यादा देख रहे थे, वो शायद बगले में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगले में तो राजीव आपका
1: राहुल गांधी
15: भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था ये, तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था। उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम का यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
1: जी।
15: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
1: कल,
15: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
1: आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। कल जयराम रमेश जी
15: 100%
1: कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
15: देखिए, सबसे बड़ा बात ये पूरा गलत एनालिसिस है। ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए थे, किए इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है। ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय ये दो बंदा, इंडिया का दो बंदा उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाहा किसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोस्त है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुमी मा शक्ति, हृदय तुमी मा भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिला माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। देखिए आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? उन लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
1: जी।
15: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
1: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
15: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
1: जी, जी आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे। इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है, या फिर कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे, कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
15: देखिए, सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसका अपोल तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है गलती।
1: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए। आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
15: देखिए, हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
1: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
15: 100% खाए को, ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया। वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है, इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन, किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। कुछ कर पाए ना पाए, हम इसमें सहमत नहीं है।
1: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
15: हमरा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलोजी उसको चाहना है दोनों को, तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलोजी हो गया, वो बात नहीं है। पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
1: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स। ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
16: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies, and things are with inspections going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions. Because our department, when such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
1: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Riya Kundu. Stay tuned.
17: You are watching India Today.

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें, उसका इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्या दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही, प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है, हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है, आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: Welcome back, viewers. We're beginning the segment with breaking news coming in. This is from down south, specifically from the state of Tamil Nadu, where Chief Minister Vijay has now come out to react to the Karnataka killings. He said, and I quote, "It is heartbreaking that Anthony Sami, John Rose, Peter and Kumar, who are Tamils residing in villages in the Hunsur Taluk of Chamarajnagar district in Karnataka, were shot dead by the Karnataka Forest Department officials in the early hours of August 15, 2026 in the Kaveri Wildlife Sanctuary area. I strongly condemn this massacre. The explanation given by the Karnataka Forest Department regarding this incident is indeed unacceptable. An honest investigation must be conducted in connection with this brutal incident. A high-level investigation committee should be formed and appropriate punishment should be meted out to those responsible." Now, this is just an excerpt of what he said. Meanwhile, Apoorva joins me on the broadcast with more details on this. Apoorva, you know, earlier we were talking about how there is now Stalin and the DMK raising questions about why the chief minister hasn't yet spoken about the killings. We do see now he has. He's condemned the action as well as come out to say that the Karnataka government must provide all necessary assistance to the families, as well as an investigation should be thoroughly provided.
3: Well, that's right, Shreya. In fact, if you do see, just a short while back, we saw the former Tamil Nadu chief minister and DMK chief MK Stalin going ahead and questioning the inhumane killings of the Tamils there as well. And right now you see the Tamil Nadu chief minister Vijay, who has gone ahead and also condemned this killing that had taken place. In fact, it's not just the way in which these three Tamils were killed, but also the chief minister and the TVK government has gone ahead and condemned the way the TVK, Congress government in Karnataka has handled the thing, especially the forest officials not being taken to task. And in fact, it's the same question that opposition as well as leaders across Tamil Nadu, including the ruling government, are questioning, which is that why is it that this incident that has shocked the state of Tamil Nadu been brushed away under the rug, and why is it the perpetrators, the forest officials who ought to be held liable, why aren't they being treated the same with the merit and a murder case that has been charged against them? In fact, Tamil Nadu has also gone ahead and stated reiterated that a high level investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
2: Absolutely, Apoorva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted, with the National Testing Agency having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology, after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
4: This is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the NTA is another controversy, is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Around majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024, around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and the examination will take place in the month of September, and that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NT office in the morning and the evening as well. And we will be also seeing
2: right.
4: the politics right. on the issue.
2: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang, used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
5: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
6: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naksalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
7: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism Chidambaram साहब Home Minister थे. सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा तो इनके as a Home Minister वो फ़ायदा है. और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
6: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
8: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है. क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
9: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
6: India has signaled a big win in its bid to eradicate the red terror, the ramwalk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
2: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre of a fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
10: Thank you.
6: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
10: 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
11: তারা ক্ষমা চেয়ে নিন ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন এটাই আশা করি ये हाई अप्रिजमेंट का पॉलिटिक्स है जो 15 साल ममता बनर्जी ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
6: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
12: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है ये देश के लिए अपमान है ये पूरा भारत के लिए अपमान है बंगाली जाति का अपमान है और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं
6: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief but later admitted that Sonia wanted Vande Mataram to stop
13: पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
14: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
6: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
15: Mere pyare deshvasiyon,
6: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
15: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
6: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
2: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. Aapse pehla sawal mera yahi rahega ki आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला? वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में, आप उसको कैसे देखते हैं?
16: एक्चुअली देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया। नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया, सोनिया जी ने वही किया। हम इसका जो क्या बोले उसको, हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है, एकदम घृणोने आदमी है ये। वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयवाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
2: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो उनके बगल में खड़े थे उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्रगीत के बीच में तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
16: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है, ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के इधर-उधर देख रहे थे, वो शायद बगल में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगल में तो राजीव आपका
2: राहुल गांधी
16: जी भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था ये, तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था, उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना दिन तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
2: जी।
16: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
2: कल,
16: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
2: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी इस चीज पर रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
16: देखिए, सबसे बड़ा बात ये पूरा गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाह किसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोष है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिलाओं को, महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
2: जी।
16: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
2: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
16: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
2: जी, जी आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है, या फिर कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे, कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
16: देखिए, सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं तो उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसका अपोलॉजी तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है तो गलती।
2: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
16: देखिए, हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
2: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
16: 100% काय को, ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया, वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है, इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन, किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। कुछ कर पाए ना पाए, हम इसमें सहमत नहीं है।
2: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार के तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
16: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलोजी उसको चाहना है दोनों को, तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलोजी हो गया, वो बात नहीं है, पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
2: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स, ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर बट एन अपॉलॉजी ऑन वीडियो, एंड द फैमिली इज वेरी मच कन्विंस्ड दैट any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing in around 16 kilos of expired and perishable food. were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints with samples collected and strict action promised.
17: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies and things are with inspections going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions because our department, when it's such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
2: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Priya Kundu. Stay tuned.
18: You are watching India Today.

0: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। अब पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
1: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
2: वंदे मातरम का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को आप जबरन बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते, मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 25 से 28 मुझे इजाजत देता है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। तो वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं है, शिर्क में आ जाता है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं।
3: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। ये उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा।

0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
2: मेक योर मीडिया प्लान स्मार्टर विद इंडिया टुडे लाइव टीवी ऑन योर कनेक्टेड डिवाइसेस। Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: you know, investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
1: Absolutely, Apoorva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted with the National Testing Agency, having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
2: Yeah, this is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the NTA's another controversy is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Around majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and the examination will take place in the month of September, and that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NTA office in the morning and the evening as well. And we will be also seeing that politics creeping on the issue.
1: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
3: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
4: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naxalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
5: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism चिदंबरम साहब होम मिनिस्टर थे. सबसे ज्यादा अगर फायदा तो इनके as a home minister वो फायदा है, और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
4: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
6: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
7: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट। Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
4: India has signaled a big win in its bid to eradicate the red terror. The ramp walk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
1: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre of a fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
4: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
8: 80 saal ke baad Bankim Babu ka ye amar mantra amar gaan jab phir se सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
9: अरे क्षमा चेये नीन भूल होयेछे स्वीकार करबेन एटाई आशा कर। ये हाई अपीजमेंट का पॉलिटिक्स है जो 15 साल ममता बनर्जी ने किया है, वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है। एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है।
4: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
10: Sonia Gandhi ne jo harkat ki hai, wo bahut sharmnak hai. Ye desh ke liye apaman hai. Ye pura Bharat ke liye apaman hai. Bengali jati ka apaman hai. Aur mera parivar ko to baat chhodiye. Hum log to bahut hi byathit hue hain.
4: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief, but later admitted that Sonia wanted Vande Mataram to stop.
11: पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
12: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया।
4: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
3: मेरे प्यारे देशवासियों,
4: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
3: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है?
4: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
1: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला? वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में, आप उसको कैसे देखते हैं?
13: एक्चुअली देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो किया, ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया। नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया। सोनिया जी ने वही किया। हम इसका जो क्या बोले उसको, हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है। एकदम घृणोने आदमी है ये। वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोची कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
1: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो जो उनके बगल में खड़े थे उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्र गीत के बीच में तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
13: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है, ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के दादा देख रहे थे, वो शायद बगले में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगले में तो राजीव आपका
1: राहुल गांधी
13: भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था। उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
1: जी।
13: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने।
1: कल
13: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
1: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
13: देखिए, सबसे बड़ा बात ये पूरा गलत एनालिसिस है। ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने पूरा गलत एनालिसिस है। ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय ये दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है। उन्होंने भी चाहा कि इसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोस्त है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग। ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुमी मा शक्ति, हृदय तुमी मा भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिला माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? उन लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
1: जी।
13: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
1: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
13: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
1: जी, जी आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे। इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है, या फिर कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे, कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
13: देखिए, सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है? वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं उसको एपोलॉजी का क्या बात है? उसका वो तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है, गलती।
1: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए। आप उससे सहमत नहीं है? आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
13: देखिए, हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
1: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है? आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं
13: 100%? काय को, ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया। वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है, इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन, किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। हम कुछ कर पाए ना पाए, हम इसमें सहमत नहीं है।
1: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
13: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर एपोलॉजी उसको चाहना है दोनों को, तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया, एपोलॉजी हो गया, वो बात नहीं है। पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो एपोलॉजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है
1: जी। जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए. व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से. ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स. ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi has hit out at the government yet again over the Jantar Mantar protests. Rahul has praised the courage of India's youth, saying young protesters stood firm while demanding accountability from the Prime Minister. Rahul also said that the youngsters raised their voices through peace, love and humour. In a social media post accompanying a video of his interaction with the students, Rahul lauded girls who participated in the protests, alleging that they faced misconduct, verbal abuse and violence and were forced to apologise to the Prime Minister. He's also announced that the next edition of Chhatro Ki Goonj, scheduled in Pune on August 22nd, will focus exclusively on girls and give young women a platform to speak.
14: Three girls have been forced to do maafi.
15: Yeah.
14: And then the Prime Minister has accepted this maafi. Aap log protest kar rahe ho. Aapko dhamka kar maafi karwa rahe hain. And then PM is saying thank you for the maafi. Who is he to be thanking for the maafi? This apology is being given to you and then you're accepting the apology.
1: Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
16: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies and things are, inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions. Because our department, when it's such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
1: Bollywood stars Ajay Devgan, Shah Rukh Khan and Tiger Shroff have received notices from the Maharashtra FDA over a Vimal Elaichi advertisement. The food regulator suspects the ad could amount to surrogate advertising for Vimal Pan Masala, which is prohibited in Maharashtra. FDA has given 15 days to the actors to explain their roles as brand endorsers. The FDA has in fact warned that legal action could follow if the advertisement is found to be misleading. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Sriya Kundu. Stay tuned.
17: You are watching India Today.

0: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है, और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए। हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं।
1: তার পরিবার গতকাল রাতেই রিয়্যাক্ট করেছেন মেল করে মাননীয় সোনিয়া গান্ধীকে, মাননীয় মল্লিকার্জুন খাড়গেকে জানিয়েছেন। তারা ক্ষমা চেয়ে নিন, ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন, এটাই আশা করেন। এ হাই অ্যাপ্রিজমেন্টটা পলিটিক্স হয়ে যে 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হয় ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হয়। এ খাস ভোট ব্যাঙ্ক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হয়।

0: Welcome back, viewers. We're beginning the segment with breaking news coming in. This is from down south, specifically from the state of Tamil Nadu, where Chief Minister Vijay has now come out to react to the Karnataka killings. He said, and I quote, "It is heartbreaking that Anthony Sami, John Rose, Peter and Kumar, who were Tamils residing in villages in the Hunsur taluk of Chamarajnagar district in Karnataka, were shot dead by the Karnataka Forest Department officials in the early hours of August 15, 2026 in the Kaveri Wildlife Sanctuary area. I strongly condemn this massacre. The explanation given by the Karnataka Forest Department regarding this incident is indeed unacceptable. An honest investigation must be conducted in connection with this brutal incident. A high-level investigation committee should be formed and appropriate punishment should be meted out to those responsible." Now, this is just an excerpt of what he said. Meanwhile, Apoorva joins me on the broadcast with more details on this. Apoorva, you know, earlier we were talking about how there is now Stalin and the DMK raising questions about why the chief minister hasn't yet spoken about the killings. We do see now he has. He's condemned the action as well as come out to say that the Karnataka government must provide all necessary assistance to the families, as well as an investigation should be thoroughly provided.
1: Well, that's it, Shreya. In fact, if you do see, just a short while back, we saw the former Tamil Nadu chief minister and DMK chief MK Stalin going ahead and questioning the inhumane killings of the Tamils there as well. And right now you see the Tamil Nadu chief minister Vijay, who has gone ahead and also condemned this killing that had taken place. In fact, it's not just about the way in which these three Tamils were killed, but also the chief minister and the TVK government has gone ahead and condemned the way the TVK Congress government in Karnataka handled the thing, especially the forest officials not being taken to task. And in fact, it's the same question that opposition as well as leaders across Tamil Nadu, including the ruling government, are questioning, which is that why is it that this incident that has shocked the state of Tamil Nadu been brushed away under the rug, and why is it the perpetrators, the forest officials who ought to be held liable, why aren't they being treated the same with the merit and a murder case that has been charged against them? In fact, Tamil Nadu has also gone ahead and stated and reiterated that a high level investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
0: Absolutely, Apoorva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted, with the National Testing Agency having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
2: This is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the NTA is another controversy, is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Around majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and re-examination will take place in the month of September, and that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NTA office in the morning and the evening. as well, and we will be also seeing the politics on the TV.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal row has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
3: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
4: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naxalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
5: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism Chidambaram साहब Home Minister थे. सबसे ज्यादा अगर फायदा तो इनके as a Home Minister वो फायदा है. और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
4: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
6: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है. क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
7: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
4: India has signalled a big win in its bid to eradicate the red terror. The ramp walk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
0: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre of a fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
4: For the first time, the full six stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song.
0: Our
4: Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
8: 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
9: তারা ক্ষমা চেয়ে নিন ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন এটাই আশা করি এই হাই অ্যাপ্রিজমেন্ট কা পলিটিক্স হে জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হে वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
4: इवन द डिसेंडेंट्स ऑफ चैटर्जी क्लेम दैट दे हैव बीन डीपली हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ सोनिया गांधी
10: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है ये देश के लिए अपमान है ये पूरा भारत के लिए अपमान है बंगाली जाति का अपमान है और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं
4: कांग्रेस इनिशियली क्लेम्ड दैट सोनिया वाज नॉट स्टॉपिंग द नेशनल सॉन्ग बट वाज सीकिंग अ चेयर फॉर पार्टी चीफ बट लेटर एडमिटेड दैट सोनिया वांटेड वंदे मातरम टू स्टॉप
11: पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
12: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
4: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
13: Mere pyare deshvasiyon,
4: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
13: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
4: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
0: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojol Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojol Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में आप उसको कैसे देखते हैं
14: एक्चुअली देखिए सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया सोनिया जी ने वही किया हम इसका जो क्या बोले उसको हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है एकदम घृणोने आदमी है ये वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया पूरा देश का अपमान किया देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोचिए कि वो राष्ट्र राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
0: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो जो उनके बगल में खड़े थे उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्रगीत के बीच में तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
14: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है, ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के ज्यादा देख रहे थे, वो शायद बगले में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगले में तो राजीव आपका
0: राहुल गांधी
14: भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था, उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना दिन तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
0: जी।
14: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
0: कल,
14: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
0: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी इस चीज पर रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
14: देखिए, सबसे बड़ा बात, ये पूरा गलत गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए थे इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाहा कि इसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोस्त है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है, देखिए वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
0: जी।
14: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
0: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
14: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
0: जी, आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है, आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत हैं कि अगर अपॉलॉजी आ गई तो आप लोग अपॉलॉजी को मान लेंगे कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
14: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं तो उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसके अपो तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है तो गलती।
0: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको एक आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
14: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
0: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
14: 100% काय को ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया, वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। हम कुछ कर पाए ना पाए हम इसमें सहमत नहीं है।
0: एक एक आखिरी आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्वड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
14: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलोजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलोजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
0: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स, ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
15: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies, and things are, inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions. Because our department, when it's such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
0: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Priya Kundu. Stay tuned.
16: You are watching India Today.

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: श्रीमती सोनिया गांधी, देयर सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड सिटिंग प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, व्हाइल इट वाज बीइंग संग, दे वर नॉट अटेंटिव, रादर देन दे वर कैजुअली टॉकिंग टू ईच अदर, गिविंग रिमार्क्स टू ईच अदर, इवन कॉलिंग समवन। दिस शोज द अटर डिसरिस्पेक्ट बाय कांग्रेस पार्टी towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram.
2: आज के सरकार ने कोई right to किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है, और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: fail to simply do their job?
1: Sir, this is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contention point between the BJP and the Congress government. And now the NTA's another controversy is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Around majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and the examination will take place in the month of September, and that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NTA office in the morning and the evening as well. And we will be also seeing
0: right.
1: the politics right. on the TV chair.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Urban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang, used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
2: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
3: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a dimagi naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed naksalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
4: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism Chidambaram साहब Home Minister थे. सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा तो इनके as a Home Minister वो फ़ायदा है. और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
3: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
5: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है. क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
6: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationalists.
3: India has signaled a big win in its bid to eradicate the red terror, the ram walk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
0: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre for fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
3: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song. Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
7: 80 saal ke baad Bankim Babu ka ye amar mantra amar gaan jab phir se सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
8: তারা ক্ষমা চেয়ে নিন ভুল হয়েছে স্বীকার করবেন এটাই আশা করি এই হাই অ্যাপ্রিজমেন্ট কা পলিটিক্স হে জো 15 সাল মমতা ব্যানার্জি নে কিয়া হে ওই পলিটিক্স কংগ্রেস ভি করতা হে এক খাস ভোট ব্যাংক কো সন্তুষ্ট করনে কে লিয়ে সব কর রহা হে
3: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
9: Sonia Gandhi ne jo harkat ki hai wo bahut sharmnak hai. Ye desh ke liye apaman hai. Ye pura Bharat ke liye apaman hai. Bengali jati ka apaman hai. Aur mera parivar ko to baat chhodiye. Hum log to bahut hi byathit hue hain.
3: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief, but later admitted that Sonia wanted Vande Mataram to stop.
10: Pura version gaya gaya kyunki sansad mein is par charcha hui. Yahan koi rokne ka prayas nahi tha kyunki lambe samay se Congress adhyaksh khade hue the. Sonia ji keh rahi thi unke liye kursi lake rakh do.
11: Ye BJP wale keh rahe hain ki apman hum logon ne kiya hai Vande Mataram ka, to aap bata dijiye कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
3: On 15th August 2026 history was made at the Red Fort an army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee
12: मेरे प्यारे देशवासियों
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time
12: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
3: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem but there is no stopping political wars Bureau report India today
0: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojal Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला? वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में, आप उसको कैसे देखते हैं?
13: एक्चुअली देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया। नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया, सोनिया जी ने वही किया। हम इसका जो क्या बोले उसको, हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है, एकदम घृणोने आदमी आई है। वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया, पूरा देश का अपमान किया, देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया। जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोचिए कि वो राष्ट्र राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयवाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
0: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो उनके बगल में खड़े थे, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्र गीत के बीच में तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
13: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है, ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के इधर उधर देख रहे थे, वो शायद बगल में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगल में तो राजीव आपका
0: राहुल गांधी
13: जी भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था, उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम को यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
0: जी।
13: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने।
0: कल
13: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
0: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
13: देखिए, सबसे बड़ा बात ये पूरा गलत गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है। इसका जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय ये दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाह किसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोस्त है जिन्ना साहब जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली जो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुम्हें मां शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति, ये जो बात है ये वो लोग महिलाओं को, महिला माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
0: जी।
13: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
0: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
13: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
0: जी, जी आपका बड़ा भाई जो है उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलोजी, एक अनकंडीशनल अपॉलोजी उनके तरफ से आए। उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है, या फिर कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे, कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
13: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे। एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं तो उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसका अपोल तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है तो गलती।
0: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए, आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
13: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है।
0: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
13: 100% काय को, ये देश का सर झुका गया, सर झुक गया। वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं। जो बिल एक बार पास हो गया है इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन, किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है। कुछ कर पाए ना पाए हम इसमें सहमत नहीं है।
0: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
13: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूं, अगर अपोलोजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा। वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलोजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है। दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है।
0: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से। ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स, ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. Karnataka is tightening the screws on food safety, with surprise inspections across hotels, restaurants and resorts exposing multiple violations. In Mysuru, officials seized 9 kilos of expired chicken from Rio Meridian Hotel, 68 kilos of meat from 4 hotels and 4 kilos of mushroom from the Q-Star Hotel. 3 resorts were served notices, while 5 food samples were collected for testing, and around 16 kilos of expired and perishable food were discarded. In Mangaluru, a consumer complaint alleging stale chicken peri-peri triggered a surprise inspection at a KFC outlet on the KS Rao Road. Officials checked the kitchen, storage areas, cold rooms and freezers before sealing the very outlet. Karnataka Health Minister, meanwhile, UT Khader, that is, has come out to say that the KFC outlet has been sealed as inspections continue across Mangaluru following the customer complaints, with samples collected and strict action promised.
14: When we came to know the situation in that outlet, this commissioner, we had a discussion, we have closed it down, we have sealed it down. Because rigorously the campaign of the awareness on food is going on all hotels, multinational companies and things are, inspection is going on. Still in Mangalore, if this is the case, then what we have to do? That I appreciate the mother and the child who got the smell and they complained to us. This is an inspiration for other customers also. I am telling all and each and every customer, if you have got any doubt, please inform us. We'll take strict actions. Because our department, when it's such big industry, ours is a very small department. Without the support of the civil society, we can't do much.
0: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Priya Kundu. Stay tuned.
15: You are watching India Today.

0: कि अब ये वंदे मातरम जो है, जो भी हमारे कहा है, उसके आदर करें उसका। इसमें इनको मतलब क्या इशू है? ये बहुत, ये आज जो दो वाक्य हुए हैं, लाल किले पे नहीं जाना और ये वंदे मातरम को जो है उस पे बहुत अपनी अनइजीनेस दिखाना और उसको बंद कराने की कोशिश करना, ये तीनों वाक्यां दे आर हाईली डेप्लोरेबल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एंड आई प्रे टू गॉड दैट गुड सेंस विल प्रिवेल।
1: सोनिया जी तो एनएसी की चेयरपर्सन रह करके सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कई सालों तक रही। प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दम्भ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ।
2: धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम, उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसके अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्यु हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो दो भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है।

0: Welcome back, viewers. We're beginning the segment with breaking news coming in. This is from down south, specifically from the state of Tamil Nadu, where Chief Minister Vijay has now come out to react to the Karnataka killings. He said, and I quote, "It is heartbreaking that Anthony Sami, John Rose, Peter and Kumar, who were Tamils residing in villages in the Hunsur Taluk of Chamarajnagar district in Karnataka, were shot dead by the Karnataka Forest Department officials in the early hours of August 15, 2026 in the Kaveri Wildlife Sanctuary area. I strongly condemn this massacre. The explanation given by the Karnataka Forest Department regarding this incident is indeed unacceptable. An honest investigation must be conducted in connection with this brutal incident. A high-level investigation committee should be formed and appropriate punishment should be meted out to those responsible." Now, this is just an excerpt of what he said. Meanwhile, Apoorva joins me on the broadcast with more details on this. Apoorva, you know, earlier we were talking about how there is now Stalin and the DMK raising questions about why the chief minister hasn't yet spoken about the killings. We do see now he has. He's condemned the action as well as come out to say that the Karnataka government must provide all necessary assistance to the families, as well as an investigation should be thoroughly provided.
1: Well, that's right, Shreya. In fact, if you do see, just a short while back, we saw the former Tamil Nadu Chief Minister and DMK Chief M.K. Stalin going ahead and questioning the inhumane killings of the Tamils there as well. And right now, you see the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, who has gone ahead and also condemned this killing that had taken place. In fact, it's not just the way in which these three Tamils were killed, but also the Chief Minister and the TVK government has gone ahead and condemned the way the TVK, Congress government in Karnataka has handled the thing, especially the forest officials not being taken to task. And in fact, it's the same question that opposition as well as leaders across Tamil Nadu, including the ruling government, are questioning, which is that why is it that this incident that has shocked the state of Tamil Nadu been brushed away under the rug, and why is it the perpetrators, the forest officials who ought to be held liable, why aren't they being treated the same with the merit and a murder case that has been charged against them? In fact, Tamil Nadu Vijay has also gone ahead and stated and reiterated that a high-level investigation committee should be constituted and proper punishment should be meted out to those responsible.
0: Absolutely, Apoorva. Thank you for putting that into context for our viewers. We have more news coming in. Now, let's quickly take a look. This is yet another embarrassment for the NTA. English, sociology, commerce papers are to be reconducted, with the National Testing Agency having ordered a reconduction of the UGC NET June 2026 papers for English, commerce, sociology, after a committee found multiple errors and significant repetition of the previously asked questions. Now, what we're learning, English and commerce papers will be held on September 9th, while the sociology paper will be held on September 10th. Right now, we have Anmol Bali joining us on the broadcast with more details on the same. Anmol, just to take our viewers through what exactly happened here, the NTA once again having failed to simply do their job.
2: This is just like another hack on the face of National Testing Agency, which has failed earlier to smoothly conduct the NEET examination, which later got cancelled, which later became a major contentious point between the BJP and the Congress government. And now the NTA is another controversy, is they have cancelled sociology, commerce and English UGC NET examination, which took place in the month of June, and the re-examination will be conducted in the month of September. Majority of the questions from the English paper were repeated from the 2024. Around 67 questions out of 150 were repeated from the 2024 UGC NET examination. And even in sociology, we have seen various grammatical errors, spelling errors, and errors in the concept and poor translation, which was also complained by students on the social media. And commerce examination also, we have seen that around 80 questions have been repeated in the question paper, and now these examinations are all cancelled, and re-examination will take place in the month of September. And that has now snowballed into a major political controversy also, where we have seen that many Congress and opposition leaders from the India bloc have started targeting the BJP and the National Testing Agency on this issue. We have seen tweets from Pawan Khera, Pawan Gogoi, and even National Students Union of India, Student Federation of India. The Congress Party student wing and the Left Party student wing will be on the ground tomorrow. They will be protesting outside the NTA office in the morning and the evening. as well, and we also seeing right. that politics is right. on the ticket. Yeah.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. The Dimagi Naxal Rao has escalated, with P. Chidambaram hitting back at the BJP, calling it a new variation of labels like Arban Naxal, Andolan Jeevi and Tukre Tukre Gang used against opposition leaders. BJP has retaliated sharply and has attacked Chidambaram, saying the former Home Minister begged Naxals for talks. So Parliament session has ended. The political slugfest clearly continues to rage on. Here's a report on the same. Take a look.
3: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
4: The war of words over Prime Minister Modi's dimagi naksal remark has escalated massively. Former UPA Home Minister P. Chidambaram hit out at Prime Minister Modi, posting a defiant response to Prime Minister's jibe and declaring that he was proud to be a Dimagi Naksal. BJP's Punjab stalwart Ravneet Singh Bittu hit back hard instantly. Pulling no punches, Bittu stated that Chidambaram had failed as a Home Minister during UPA 1 and UPA 2 and allowed Naksalism to grow. Bittu went further, accusing Chidambaram and the Congress of shedding tears for Naxals, asserting that the party never wanted Naxalism to end.
5: तकरीबन 12 states थी, जिसमें Naxalism Chidambaram साहब Home Minister थे. सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा तो इनके as a Home Minister वो फ़ायदा है. और ये तो आंसू बहाते हैं उनके खाते. इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द है.
4: The controversy originated with Modi's Red Fort address, where he claimed Naxalism had been all but eliminated, but warned of Dimagi Naxals. Prime Minister warned that Dimagi Naxals remained a threat, calling for them to be identified and isolated. Opposition has dismissed Prime Minister's remarks as a sign of desperation, drawing a parallel to his earlier urban Naxal jibe.
6: राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है. क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है?
7: इट शोज द डेप्थ टू विच आरएसएस एंड बीजेपी लीडर्स आर विलिंग टू डीजेनरेट. Those who criticize, they are being dubbed as anti-nationals.
4: India has signaled a big win in its bid to eradicate the red terror, the ram walk of former Naxal cadre being the symbol. But a fresh war over the intellectual Naxalism is now dividing the political class. With Kamaljeet Sandhu in Chandigarh, Bureau Report, India Today.
0: A political row has erupted over the national song Vande Mataram just after India's 80th Independence Day. The centre's push for the complete six-stanza version, now protected under the amended Prevention of Insults to National Honour Act, has put the national song at the centre for fresh political battle. BJP is alleging that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway, an insult by Congress to the national song. Take a look at this news report.
4: For the first time, the full six-stanza version was rendered at the Red Fort on Independence Day. But the celebrations at Congress headquarters in the national capital has snowballed into a massive political storm. BJP has alleged that Sonia Gandhi attempted to stop the Vande Mataram recital midway. BJP leaders have also posted videos of Rahul Gandhi at the event, claiming that Rahul was advising against singing the full song.
8: Not
4: Home Minister Amit Shah has branded it an insult to the national song and its writer, Bankim Chandra Chatterjee, by Congress at the behest of Sonia Gandhi.
8: 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है
9: अरे क्षमा चाहिए नहीं भूल हुई चे स्वीकार कर के नहीं आशा कर ये हाई अप्रिजमेंट का पॉलिटिक्स है जो 15 साल ममता बनर्जी ने किया है वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करता है एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब कर रहा है
4: Even the descendants of Chatterjee claim that they have been deeply hurt by the actions of Sonia Gandhi.
10: सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है ये देश के लिए अपमान है ये पूरा भारत के लिए अपमान है बंगाली जाति का अपमान है और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं
4: Congress initially claimed that Sonia was not stopping the national song but was seeking a chair for party chief but later admitted that Sonia wanted Bande Mataram to stop
11: पूरा वचन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो
12: ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया
4: On 15th August 2026, history was made at the Red Fort. An army band played the full Vande Mataram before the national anthem as the nation marked 150 years of the song written by Bankim Chandra Chatterjee.
13: Mere pyare deshvasiyon,
4: Prime Minister Modi took pride in the fact that the complete Vande Mataram was being sung for the first time.
13: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है
4: The 2026 amendment now gives the full Vande Mataram song legal parity with the national anthem. But there is no stopping political wars. Bureau Report, India Today.
0: Earlier, I spoke to Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojol Chattopadhyay, who demanded a video apology from Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Let's listen in to what else he had to say. We're now taking up this question to the family of the late Bankim Chandra Chattopadhyay. What did they feel, their sentiments around this entire episode? And joining me on the broadcast is late Bankim Chandra Chattopadhyay's great-grandson, Shojol Chattopadhyay. Mr. Chattopadhyay, thank you for joining us on India Today. आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके परिवार को कैसा फील हुआ जब आपको इस पूरे हादसे के बारे में पता चला वो जो सोनिया गांधी जी का एक रिएक्शन था बीच वंदे मातरम के रिसाइटल में आप उसको कैसे देखते हैं
14: एक्चुअली देखिए सोनिया गांधी जी ने जो किया ये तो वो नेहरू जी का लेगेसी को फिर सामने लेके आया नेहरू जी जो किए थे उसको छोटा करके वंदे मातरम को कभी उसको सामने लाने नहीं दिया सोनिया जी ने वही किया हम इसका जो क्या बोले उसको हम एकदम सोनिया जी के बारे में बोलने का कुछ शब्द नहीं है एकदम घृणोने आदमी है ये वो खाली वंदे मातरम को अपमान नहीं किया पूरा देश का अपमान किया देश का प्रधानमंत्री जी के अपमान किया जो वंदे मातरम को अपमान करेंगे, सोचिए कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो जातीयतावाद के विरोध है, वो जातीयतावाद के खिलाफ काम करता है, ये हम मान नहीं सकते हैं।
0: तो कांग्रेस का ये कहना था, कल जब ये वीडियो पहले आया था, कांग्रेस का ये कहना था कि सोनिया जी राष्ट्र गीत को बिल्कुल भी इंसल्ट करने की कोशिश में नहीं थे, वो एक चेयर मंगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो जो उनके बगल में खड़े थे, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत समय से खड़े हुए थे। क्या आप इस चीज से अग्री करते या सहमत है? क्या आपको सही लगता है कि अगर इसी वजह से सोनिया जी बात कर रही थी राष्ट्रगीत के बीच में, तो ठीक है, जाने दे सकते हैं? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं?
14: नहीं, एकदम बिल्कुल झूठ बात है, ये सहमत नहीं है। इसका पूरा क्लिपिंग हमने देखे हैं। सोनिया जी जब मुंह घुमा के इधर-उधर देख रहे थे, वो शायद बगल में जो बंदा खड़े थे उसको बोल रहे थे बंद करने के लिए, तो उन्होंने उसके बोल रहे थे कि थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बगले में तो राजीव आपका
0: राहुल गांधी
14: जी भी खड़े थे। जब वंदे मातरम हो रहा था, ये तो अभी तो ये कानून पास हो गया कि वंदे मातरम जब होगा तो सबको ये गाना पड़ेगा, तो राहुल गांधी का तो पूरा मुंह बंद था, उसका मुंह में एक तो क्या बोलते हो, हेजिटेशन है उसका मुंह में, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम लोग भी तो वंदे मातरम कहते हो, इतना साल तो तुम भी वंदे मातरम का यूज करते गए हैं, इतना साल तो वंदे मातरम लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, कांग्रेस भी किए थे इतना देर तक। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बात पसंद नहीं है तो तुमको वहां जाना नहीं था
0: जी।
14: देश के सामने, देश का ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने देश का पूरा सर झुका दिया ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने
0: कल,
14: इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।
0: आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सहमत तो नहीं है, और आपको भी यही लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे और गीत को बीच में ही रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? कल जयराम रमेश जी इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते वक्त ये भी कह रहे थे कि जो आपने, क्योंकि नेहरू की बात की, तब की बात की, वो यही कह रहे थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एडवाइस पे ये चीज हुआ था इतने सालों पहले, जिसके वजह से 6 स्टैंजास से 2 स्टैंजास काट दिए गए थे और वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया था एज द नेशनल सॉन्ग। क्या आप इस चीज को मानते हैं?
14: देखिए, सबसे बड़ा बात, ये पूरा गलत एनालिसिस है, ये जो वंदे मातरम लेके आप जो एनालिसिस किए हैं इन लोगों ने, पूरा गलत एनालिसिस है, ये एनालिसिस पूरा गलत है इसका। जो वंदे मातरम को जो पहले जब खंडित किया जा रहा था, जो झालन लड़े खंडित करने की कोशिश किए थे, खंडित करते जा रहे थे, उस समय ये दो बंदा इंडिया का उसको प्रोटेस्ट किए थे। एक आदमी का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, दूसरा बंदा का नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये दोनों ने पहले से प्रोटेस्ट किया था जिनको मत खंडित करो। रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बाद में आया, उसका तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी चाहा कि इसको सामने रखने के लिए, लेकिन उस समय जो सरकार चल रहा, सरकार का बात तो मानना पड़ेगा। टैगोर जी का तो कोई दोष नहीं है दोस्तों, एकदम जो जिसका दोष है जिन्ना साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। एक्चुअली वो क्या करता है देखिए, वो लोग अल्लाह किसी को नहीं मानता है, वो अल्लाह को ही मानता है, भगवान एक, उन लोगों का भगवान एक ही है। वो मातृशक्ति को नहीं मानते हैं ये लोग, ये जो कम्युनिटी है, ये लोग मातृशक्ति को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा उसमें बाहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति, ये जो बात है, ये वो लोग महिलाओं माता को सम्मान नहीं करते ये लोग। लेकिन आज तक कोई महिला मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? वो लोग घुसने नहीं देता, आदमी लोग जाता है
0: जी।
14: इसीलिए वो हमारा वंदे मातरम का अंतर तो हमारा माता देवियों का सारे नाम है।
0: मिस्टर चट्टोपाध्याय, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप सुमित्र चट्टोपाध्याय, आप ही के फैमिली के तरफ से, जो कि बीजेपी के एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कुछ देर,
14: मेरा बड़ा भाई है सुमित्र
0: जी, आपका बड़ा भाई जो है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है सोनिया जी को, ये कहते हुए कि एक अपॉलॉजी, एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी उनके तरफ से आए, उन्होंने पर यह भी कहा है कि अगर अपॉलोजी आ गई तो हम इस चीज को और आगे नहीं लेके जाएंगे. इसीलिए उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को अभी भी इस चीज पे कुछ बताया नहीं है या फिर कोई ईमेल कोई नोटिफिकेशन उन तक नहीं गई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक नहीं गई है. आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत हैं कि अगर अपॉलोजी आ गई तो आप लोग अपॉलोजी को मान लेंगे कि आप इस चीज को लीगली आगे लेके जाना चाहते हैं?
14: देखिए सारे देशवासी इसको लीगली आगे ले जाने चाहेंगे. एपोलॉजी का क्या बात है, वो तो जानबूझ के अगर कोई गलती करते हैं तो उसके एपोलॉजी का क्या बात है, उसका वो तो जानबूझ के किया, जो किया तो बच्चा तो नहीं है तो गलती.
0: फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी ही मांगी है फिलहाल के लिए. आप उससे सहमत नहीं है, आपको लीगली इस चीज को आगे लेके जाना है?
14: देखिए हम सहमत नहीं है, लेकिन मेरा गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी अगर सरकार से इसको एपोलॉजिकली मान लेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हम सहमत नहीं है.
0: आप एज अ फैमिली मेंबर आप सहमत नहीं है, आप लीगली इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं?
14: 100% खाए को ये देश का सर झुक गया. वो प्रधानमंत्री जी को अपमान किए हैं, गृह मंत्री जी का अपमान किए हैं, सारा भारतवासी का अपमान किए हैं. जो बिल एक बार पास हो गया है इसको बोलना चाहिए, छयंत्र होना चाहिए, तो उसको डिनाई करने का अधिकार उसको कौन किसने दिया? ये तो प्रधानमंत्री जी का अपमान है, सारा देशवासी का अपमान है. कुछ कर पाए ना पाए हम इसमें सहमत नहीं है.
0: एक आखिरी मैसेज आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गिवन दैट इट हैज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेगेसी इन्वॉल्व्ड एज वी स्पीक, एक आखिरी मैसेज सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पूरे एपिसोड के बारे में जो कल हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, वो क्या रहेगी आपके तरफ से?
14: हमारा तरफ से ही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अपोलोजी उसको चाहना है दोनों को तो ऑन कैमरा आके चाहना पड़ेगा. वो कोई एक तो चिट्ठी हम लिख दिया अपोलोजी हो गया वो बात नहीं है, पहला बात यही है. दूसरा बात यही है, अगर वो अपोलोजी नहीं चाहेंगे तो कभी उनका मुंह में वंदे मातरम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है. कांग्रेस का कोई आदमी का मुंह में वंदे मातरम सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है. हमारा परिवार की तरफ से ये मेरा प्रोटेस्ट है.
0: जी जी मिस्टर चट्टोपाध्याय, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परिवार का स्टांस हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए. व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज टू से. ही हैज मेड सम वेरी स्ट्रिंजेंट पॉइंट्स. ही हैज डिमांडेड एन अपॉलॉजी, एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एंड नॉट एन अपॉलॉजी ऑन पेपर but an apology on video. And the family is very much convinced that any sort of defense that comes in from the Congress is not enough. There was a clear sign of insult to the national song, and the family has the sentiments of the family, and as they have had to say, the rest of the country has been hurt by Sonia Gandhi's actions and Rahul Gandhi's actions. So this is where it all stands. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Sriya Kundu. Stay tuned.
15: You are watching India Today.

0: कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। आज पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो।
1: अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है।
2: वंदे मातरम का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को आप जबरन बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते, मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 25 से 28 मुझे इजाजत देता है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। तो वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं है, शिर्क में आ जाता है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं।
3: ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। ये उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा।
0: दो तीन साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृहमंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं आई। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।
1: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.